आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज है सोमवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन

0: में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज का चिंतन। सुकरात का ये कथन है कि संसार में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है वैसा ही अपने आप को व्यक्त करे। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 220। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाड़िक। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज आप सुनेंगे। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर। इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 9:30 पर होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप के सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदा के निजोशी की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। सुबह 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का और दिन में 2:00 सुनिए त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और दिन में 3:00 का समय है सखी सहेली इस कार्यक्रम का। शाम 4:00 सुनिए कार्यक्रम पिटारा, इसके अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा, जीवन शैली और योग। इस विषय पर योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5:00 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7:00 सुनिए कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में जिस फिल्म के गाने आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। रात 8:00 कार्यक्रम हवा महल झलकी नीम हकीम, इसके लेखक हैं राजकुमार वाल्टर और निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9:00 सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10:00 का समय छाया गीत कार्यक्रम का है और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11:00 सुनिए कार्यक्रम

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 220।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विफल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्री राम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: गजतत्वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: कल हमने लोक संगीत में प्रचलित विभिन्न सारंगियों की बात की थी, आज हम शास्त्रीय संगीत में प्रचलित सारंगी के संबंध में विचार करेंगे। सच पूछा जाए तो सारंगी हमारी मूल्यवान और समृद्ध वाद्य संगीत परंपरा का परिचायक है। गज से बजाए जाने वाले वाद्यों में सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रथम सप्तक अचल थाट में, दूसरा सप्तक रागानुरूप और तीसरा सप्तक संवाद स्वरों में मिलाया जाता है। गायन में सारंगी की संगत से यदि वादक सुरीला हुआ तो जिस भरावट व आकर्षण की वृद्धि होती है वह अपने आप में अनुपम है। इसके आविष्कर्ता के संबंध में अमीर खुसरो, सारंग खान, मियां कल्लू खान, हकीम बकरात गो तथा रावण आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके गज का आकार धनुष के समान होता है और धनुष को सारंग भी कहा जाता है। इसीलिए यह भी संभव है कि धनुष से बजाए जाने के कारण इसका नाम सारंगी पड़ा हो। वर्तमान पीढ़ी के श्रेष्ठ सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने चर्चा के दौरान बताया कि एक जमाने में सारंगी को सौरंगी कहते थे और सौरंगी से बिगड़कर सारंगी नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके आविष्कर्ता के संबंध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने सारंगी का उल्लेख भिन्न भिन्न नामों से किया है किंतु विस्तृत वर्णन नहीं किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी तक यह अल्प रूप में प्रचारित हो चुकी थी। संगीत राज ग्रंथ के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह प्रचलित हो गई थी। यही कारण है कि आईने अकबरी और राग दर्पण ग्रंथों में सारंगी का वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में रचित राग दर्पण में सारंगी वादकों का वर्णन भी है। इसके अलावा संगीत नारायण ग्रंथ में सारंगी वीणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। आइए इस मधुर वाद्य सारंगी पर राग किरवानी सुनते हैं। कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खां।

अब हम सारंगी के आकार पर विचार करेंगे। सारंगी की लंबाई लगभग 2 फीट होती है। इसके नीचे वाले भाग को मंधान कहते हैं, जिसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है। घुरच अर्थात ब्रीच की व्यवस्था इसी मंधान में की जाती है। मध्य भाग को छाती अथवा गला कहते हैं। छाती की बाईं ओर 24 छोटी छोटी खुटियां तरबों के लिए लगाई जाती है। सबसे ऊपर वाले भाग को मगज कहते हैं, जिसमें दाएं बाएं मुख्य तार हेतु 2-2 बड़ी खुटियां और 11 तरबों हेतु छोटी खुटियां लगाते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य 4 तार और 35 तरबों के तार लगाए जाते हैं। वर्तमान में सारंगी वादक मुख्य 4 तार को सामान्यतः इस प्रकार मिलाते हैं। प्रथम तात का तार मध्य सप्तक षड़ स्वर में, दूसरा तात का तार मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में, तीसरा तात का तार मंद्र सप्तक के षड़ स्वर में और चौथा तार फौलाद का पंचम में अथवा मध्यम में राग के अनुसार मिलाते हैं। गज को दाहिने हाथ में पकड़कर तारों पर घर्षण किया जाता है। सितार, वायलिन आदि वाद्यों में स्वर उत्पत्ति हेतु अंगुलियों से तार को दबाया जाता है, जबकि सारंगी में स्वर निकालने हेतु अंगुलियों के नाखून का स्पर्श या घर्षण किया जाता है। भारतीय संगीत की सूत, घसीट, गमक, कर्ण, खटका, मुरकी आदि विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी सारंगी जितनी लोकप्रिय होना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उस्ताद बुंदू खां और पंडित राम नारायण जी ने

सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हम पंडित राम नारायण जी के सारंगी का रसास्वादन करते हैं।

गज तत्वाद्य। गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये दिल लगी फिल्म का गाना सुरैया और श्याम की आवाजों में, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद अली का। आज अभिनेत्री और गायिका सुरैया को उनके जन्मदिवस पर हम याद कर रहे हैं।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गाना सुरैया की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल, संगीत नौशाद का। अगला जो गीत है ये बड़ी बहन फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत हुस्नलाल भगतराम का।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ श्याम सुंदर का संगीत बद्ध किया ये गाना सुरैया की आवाज में, फिल्म का नाम चार दिन।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है और आइए अब एक नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 7:30 से होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:00 से आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर होगा कार्यक्रम सुर संगम और 8:30 से आप सुनेंगे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इसमें आज बातचीत का विषय होगा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। सुनेंगे सहायक आचार्य योग विभाग अवध विश्वविद्यालय अयोध्या श्री अनुराग सोनी की वार्ता। विषय होगा व्यक्तित्व निर्माण में योग की भूमिका। साथ ही होगा प्यारा संगीत और स्थानीय समाचार खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 9:00 से होगा आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 से 11:55 तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ और 11:55 पर एक बार फिर से आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से। होगा कार्यक्रम विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। 12:30 से आप सुनेंगे अवधि लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोकरंग और 1:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 2:00 से होगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि और 2:15 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार। 2:30 से होगा बहनों का कार्यक्रम अंगना, जिसमें आज बातचीत होगी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के बारे में और साथ ही होगी बात सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुनेंगे कहानीकार प्रेम दुलारी की कहानी जीवन साथी और जानेंगे एक स्वादिष्ट सी रेसिपी के बारे में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 3:00 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 3:30 से शाम 5:00 तक आप जुड़े रहेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के साथ। शाम 5:00 एक बार फिर से आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से। होगा कार्यक्रम युवाणी, जिसमें चर्चा होगी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। करियर गाइडेंस में सुनेंगे निहारिका सिंह की वार्ता। विषय होगा कृषि में AI और युवाओं का भविष्य। सुनेंगे रोजगार समाचार, साथ ही होंगे कुछ प्यारे गीत इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 5:30 से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत और 6:00 से होंगे समाचार पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। 6:10 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी और 6:20 से होंगे संस्कृत समाचार। 6:30 से होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की और किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा शाम 6:45 से। इसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। सुनेंगे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के कीट विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप कुमार दलाल की भेंट वार्ता। विषय होगा खरीफ फसलों में लगने वाले कीट और उनका प्रबंधन। सुनेंगे प्यारा सा लोकगीत, जानेंगे बाजार भाव, लेंगे मौसम की जानकारी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। शाम 7:20 से होंगे प्रादेशिक समाचार और 7:30 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। 8:15 से आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से, होगा कार्यक्रम गीत गुंजन और 8:45 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार।

0: संध्या 9 बजे से होगा न्यूज एट 9 और 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी बात। 9:30 से होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या और 10:30 से आप जुड़ जाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ। 11 बजे से होंगे समाचार पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। युद्ध तो हमारे केंद्र से आज प्रसारित हमारे लिए कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
4: यूपी की एक नई पहचान बनी है, कहीं भी आप चले जाइए गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
3: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
5: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
3: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को

0: आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
1: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
3: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अम्बेडकर नगर जिले में पहुँचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार GST, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

0: मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

0: भी कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: धूप में निकलान करो रूप की रानी।
6: उफ, तपती दोपहर और झुलसाती गर्मी, ऊपर से हर साल बढ़ती हीट वेव का खतरा।
7: सावधान, लू जानलेवा हो सकती है, मगर थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है।
8: दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, पानी खूब पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहनें, धूप में छतरी टोपी या

0: गमछा जरूर लें, साथ ही जरूरतमंदों और पशु पक्षियों को भी पानी दें।
1: हीट वेव से डरे नहीं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
0: लू से बचे, जीवन बचाए।
2: धूप में निकला न करो रूप की रानी।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त नेहा और आप सुन रहे हैं भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम अमृत कलश, जहाँ हर सुर में है श्रद्धा, जहाँ हर शब्द में है विश्वास और हर धुन आपको ले जाएगी उस दिव्य संसार में जहाँ मन को मिलता है सुकून और आत्मा को मिलती है शांति। जीवन की आपाधापी में जब मन थक जाए तो भक्ति ही वो अमृत है जो हर पीड़ा को हर लेता है, और इसी अमृत को लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के बीच। तो आइए कुछ पल निकालिए अपने लिए और डूब जाइए इस भक्ति के पवित्र सागर में, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम अमृत कलश। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शर्मा बंधु की स्वर में इस भजन के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस पवित्र पावन कार्यक्रम अमृत कलश में। और कार्यक्रम में अगला भजन सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: तो आइए सुन।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के,
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: घर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंगहम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
9: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
8: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
10: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों

0: ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
5: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ। हुआ है।

0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता, ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षक की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
3: धन्यवाद मनोज। और अंत में

मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 101.9 FM बैंड पर. हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं. आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम.

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: कार्यक्रम सुगम संगीत सुनने वाले, सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं कैलाश खेर के स्वर में कार्यक्रम का पहला गीत।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुर संगम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: आपके संदेश
2: से आते हैं
1: आपके गीत,
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर। क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम अंगना मा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
7: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा, बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
8: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
9: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
8: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
9: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
8: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।

कार्यक्रम प्रणाम नृत्य सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म नहीं है, ये तो रंगों का एक खूबसूरत समंदर है, जहां अपनी मुस्कान का ब्रश उठाइए, उम्मीदों के कलर घोलिए और हर एक दिन को बना दीजिए एक शानदार मास्टरपीस। जैसे हर सुबह सूरज नई किरणों के साथ आता है, वैसे ही हर नया दिन हमारे पास खुशियों के नए रंग लेकर आता है। बीती बातों की धूल को झाड़िए और आज की धूप का आनंद लीजिए। बाहर चाहे मौसम कैसा भी हो, उदास हो, अगर आपके भीतर सकारात्मकता की रोशनी है तो आप हर जगह चमक बिखेर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी और के दिन को भी रोशन कर सकती है। तो तितली की तरह बनिए, जो हर फूल पर बैठती है, रंग बिखेरती है और हमेशा ऊंची उड़ान की चाह रखती है। मुश्किलों को कहिए बाय बाय और खुशियों को बोलिए हाय। अपने आत्मविश्वास सबसे खूबसूरत लिबास है आपका, और धैर्य आपकी सबसे मीठी धुन। जब आप इन दोनों को पहनकर मुस्कुराते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ झूमने लगती है। अपने भीतर के उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए जो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेता है, चाहे वो चाय की पहली चुस्की हो या ठंडी हवा का झोंका हो या फिर किसी का मुस्कुरा कर आपको देखना हो। आज के दिन को जी भर कर जिए और अपनी सकारात्मकता को चारों तरफ रंग बनाकर बिखेरे। इसी खूबसूरत से सोच के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज है 15 जून और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में 15 जून यानी कि आज के दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें अपने बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके सम्मानपूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने का संदेश देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता और बुजुर्गों को देव तुल्य माना गया है। परिवार और समाज की नींव उनके अनुभव, त्याग और संस्कारों पर टिकी होती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में लगाया होता है। ऐसे में उनके प्रति सम्मान, प्रेम और देखभाल हमारा नैतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। दोस्तों, लेकिन बदलते वक्त में एक चिंताजनक स्थिति भी सामने आई है। आज अनेक बुजुर्ग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। यही स्थिति बुजुर्ग दुर्व्यवहार कहलाती है। ये केवल मारपीट या हिंसा तक सीमित नहीं है। किसी बुजुर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनकी बातों को अनसुना करना, उन्हें अकेला छोड़ देना, उनकी संपत्ति या धन का अनुचित उपयोग करना, उनकी स्वतंत्रता छीन लेना या उन्हें अपमानित करना भी दुर्व्यवहार का ही रूप है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि दुर्व्यवहार केवल कहीं बाहर ही होता होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके अनेक मामले घरों के भीतर घटित होते हैं। व्यस्त जीवन शैली, संयुक्त परिवारों का विघटन, बढ़ती भौतिकता और पीढ़ियों के बीच संवाद की कमी इसके प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। बुजुर्गों की सबसे बड़ी पीड़ा अक्सर शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक होती है। उन्हें यह महसूस होना कि अब उनकी आवश्यकता नहीं रही, उन्हें भीतर तक ये आहत कर देता है। श्रोताओं, बुढ़ापा जीवन की एक स्वाभाविक अवस्था है। आज जो युवा है, कल वे भी बुजुर्ग होंगे। इसलिए ये विषय केवल किसी एक वर्ग का नहीं है बल्कि पूरे समाज का विषय है। हमें ये समझना होगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि अनुभव और ज्ञान की अमूल्य धरोहर हैं। उनके जीवन के अनुभव अनेक समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। परिवार में उनकी उपस्थिति बच्चों को संस्कार, परंपरा और जीवन के मूल्यों से जोड़ती है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का उद्देश्य केवल समस्याओं को उजागर करना नहीं है बल्कि समाधान की दिशा में समाज को प्रेरित करना भी है। इसके लिए सबसे पहला कदम है संवाद। परिवार के सदस्य प्रतिदिन कुछ समय अपने बुजुर्गों के साथ जरूर बिताएं, उनकी बातें सुनें, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें निर्णयों में सहभागी बनाएं। छोटी छोटी बातें जैसे उनका

0: हालचाल पूछना, उनके साथ बैठकर भोजन करना या उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना उन्हें आत्मीयता का अनुभव कराती है। दोस्तों, दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा। बुजुर्गों की नियमित स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना परिवार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही डिजिटल युग में उन्हें नई तकनीकों की जानकारी देना भी आवश्यक है ताकि वे किसी प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी का या साइबर अपराध का शिकार न हों। सरकार और समाज दोनों स्तरों पर भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किंतु किसी भी कानून से अधिक प्रभावी है परिवार का स्नेह और समाज में संवेदनशीलता। यदि परिवार में सम्मान और अपनापन है तो बुजुर्गों का जीवन अधिक सुखद और सुरक्षित बन सकता है। दोस्तों, अयोध्या की पावन धरती मर्यादा, कर्तव्य और पारिवारिक मूल्यों की प्रेरणा देती है। भगवान श्री राम का जीवन अपने माता पिता और बड़ों के प्रति आदर का संदेश देता है। आज आवश्यकता है कि हम उन्हीं आदर्शों को अपने व्यवहार में उतारें, अपने घर, अपने आसपास रहने वाले बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बने, उनकी आवश्यकताओं को समझें, उन्हें ये एहसास कराएं कि वे हमारे परिवार, हमारे समाज के सम्मानित सदस्य हैं। आइए इस विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं का आदर करेंगे, उनकी सुरक्षा और उनकी गरिमा की रक्षा करेंगे तथा एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां वरिष्ठ नागरिक सम्मान, आत्मविश्वास और प्रसन्नता के साथ जीवन जी सके। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां बुजुर्गों के चेहरे पर सम्मान और संतोष की मुस्कान बनी रहे।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। और आइए आप सुनते हैं योग विभाग अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के सहायक आचार्य श्री अनुराग सोनी की वार्ता। विषय है व्यक्तित्व निर्माण में योग की भूमिका।
2: व्यक्तित्व मात्र हमारे बाहरी रंग रूप या वस्त्रों से नहीं निर्मित होता, बल्कि इसमें हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार भी सम्मिलित होते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ तनाव और भटकाव बहुत सामान्य हो गए हैं, वहीं योग एक ऐसा साधन है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को विकसित करने और उसे सही दिशा देने में सहायक होता है। योग का वास्तविक अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का एकीकरण। आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि योग हमारे व्यक्तित्व को कैसे बदलता है। शारीरिक स्तर पर एक आकर्षक व्यक्तित्व के लिए स्वस्थ शरीर उसकी पहली आवश्यकता है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक स्तर पर ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि नियमित अभ्यास का क्रम बना रहता है तो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि के साथ साथ निपुणता में भी निखार आता है। आयुर्वेद के वर्णित तथ्यों के आधार पर बताया गया है कि योग विद्या का दैनिक जीवन में प्रयोग करने से व्यक्ति 100 वर्षों से अधिक सक्षम एवं कार्यशील बना रहता है। इसके आज अनेकों प्रमाण समाज में विद्यमान हैं। नियमित योग के अभ्यास से शरीर के सभी अंग सक्रिय रहने के साथ साथ व्याधियों से मुक्त रहते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। शारीरिक मुद्रा हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है। हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं या कैसे चलते हैं, इसमें न केवल हमारा आत्मविश्वास झलकता है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को भी सीधे प्रभावित करता है। आज के समय में अधिक समय तक कंप्यूटर या लैपटॉप पर कार्य करना एवं मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से शारीरिक संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उठने बैठने के गलत तरीके से अधिकांश लोगों में झुककर चलने, कंधों के झुकने से कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या अधिक बढ़ रही है। इस समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए एक व्यवस्था

व्यवस्थित संतुलित और आकर्षक शारीरिक मुद्रा के निर्माण में योग सबसे अधिक प्रभावशाली और प्राकृतिक साधन है। हमारी शारीरिक मुद्रा पूरी तरीके से रीढ़ पर आधारित होती है। योगाभ्यास से रीढ़ की हड्डी को प्राकृतिक रूप से सीधा रखने और उसे लचीला बनाए रखने में सहायता मिलती है। ताड़ासन खड़े होने की सही मुद्रा सिखाता है। यह रीढ़ को ऊपर की ओर खींचता है और पूरे शरीर को एक सीध मिलाता है, पुनः स्थापित करता है, जिससे व्यक्तित्व में आकर्षक गरिमा और आत्मविश्वास प्रकट होने लगता है। हमारा मन जितना शांत होगा, हमारा व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली होगा। मानसिक विकास का सीधा संबंध हमारी भावनाओं एवं तनाव को संभालने की क्षमता और मानसिक शांति से होता है। इसके साथ ही यह एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स का स्राव बढ़ाता है, जो हमारे मानसिक स्तर को संतुलित करता है। योग हमें हमारी भावनाओं को समझने और उन पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। यह अवसाद के लक्षणों को कम करने और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में सहायक है। नियमित प्राणायाम और ध्यान से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ हमारी बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। योगिक क्रियाओं से बौद्धिक विकास का तात्पर्य हमारे सोचने, समझने, सीखने की क्षमता से है। योग मस्तिष्क की बनावट और उसकी कार्यक्षमता को सकारात्मक रूप से ऊर्जावान बनाता है। एकाग्रता से जब हम योग या प्राणायाम करते हैं तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ने लगता है। इससे अशांत हुए मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है, जो विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों के लिए बेहद लाभप्रद है। अब तक हुए शोध से यह पता चलता है कि प्राणायाम और ध्यान से मस्तिष्क में ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ता है। मस्तिष्क का यह भाग सीखने और स्मरण शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। योग से मानसिक स्पष्टता आती है। जब मन शांत और भ्रम से मुक्त होता है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही और तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होता है। प्राणायाम और ध्यान से मानसिक तनाव, चिंता और क्रोध कम होता है। जब यह भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं तो दूसरों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। योग के 8 अंगों में यम और नियम को सबसे पहले रखा गया है। यह हमें समाज में रहने के सही तौर तरीके और अनुशासन को सिखाता है। योग से हमारे भीतर दया, करुणा, सत्य और ईमानदारी जैसे गुणों का उदय होता है। नियमित योग करने से जीवन में अनुशासन आता है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि हम सभी अपने व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं तो योग को किसी थेरेपी की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। 21वीं सदी की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अवसाद और एकाग्रता की कमी एक वैश्विक चिंता का विषय बनी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या केवल भौतिक सफलता ही एक मजबूत व्यक्तित्व की पहचान है? भारतीय ऋषियों, मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस बात को समझ लिया था। एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण केवल बाहरी चमक दमक से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से होता है। विज्ञानमय कोष को धारणा और ध्यान के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, जिसके द्वारा सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। आनंदमय कोष आध्यात्मिक स्तर का द्योतक है, जो समाधि या आत्म साक्षात्कार एवं परम शांति का अनुभव कराता है। जब योग इन 5 स्तरों पर कार्य करता है तो व्यक्तित्व के भीतर एक दृढ़ व्यक्तित्व निर्मित होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। यही शक्ति उसे ऊर्जावान बनाए रखती है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां लगभग 65% आबादी कामकाजी उम्र 15 से 64 वर्ष के लोगों की है। इस युवा कार्यबल का लाभ उठाने के लिए युवाओं का शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वस्थ होना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान आंकड़े एक चिंताजनक स्थिति पेश करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का संकट विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 7 में से एक व्यक्ति लगभग 14% किसी न किसी मानसिक अस्वस्थता या तनाव की स्थिति में संघर्ष कर रहा है। कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले लगभग 43% युवा तनाव और बर्नआउट अर्थात सख्त क्षीणता के शिकार हो रहे हैं। भारत में युवाओं के गिरते स्वास्थ्य स्तर के कारण ही विश्व में इसे डायबिटीज और हार्ट अटैक की राजधानी कहा जाने लगा है। अनियंत्रित जीवन शैली, गलत खान पान से युवाओं में मोटापा, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसे अनेकों समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री के सकारात्मक प्रयासों से भारतीय योग विज्ञान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान एवं स्वीकार्यता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून की शुरुआत के बाद से लेकर भारत में योग को लेकर एक नई चेतना जागृत हुई है। आयुष मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अब 60% से अधिक शहरी आबादी किसी न किसी रूप में आसन, प्राणायाम और ध्यान को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना रही हैं। स्कूलों और कॉरपोरेट ऑफिसों में योग को अनिवार्य या स्वैच्छिक रूप से सम्मिलित करने में 20-25% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2026 के इस आधुनिक और डिजिटल भारत में, जहां हम विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं, हमें ऐसे नागरिकों और युवाओं की आवश्यकता है जो न केवल तकनीकी रूप से दक्ष हो बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थिर और चरित्रवान हो। योग किसी धर्म या संप्रदाय का विषय नहीं, यह मानव मात्र के कल्याण का विज्ञान है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी योग का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है।

0: वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी योग का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज विश्व के अनेकों देश योग को स्वास्थ्य और कल्याण का प्रभावी साधन के रूप में अपनाया जा रहा है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी योग का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज विश्व के अनेकों देशों में योग को स्वास्थ्य और कल्याण का प्रभावी साधन के रूप में अपनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि योग केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है, जो सभी को स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव के सूत्र में जोड़ने का कार्य करता है। योग व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आधार है। यह व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, नैतिक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। योग के माध्यम बल्कि एक आदर्श परिवार, श्रेष्ठ समाज और सशक्त राष्ट्र की भी नींव रखी जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए और इसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। योग हमें स्वयं से जुड़ना सिखाता है। ध्यान के माध्यम से जब हम अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से भरा मन बाहरी आलोचनाओं या असफलताओं से डरा नहीं होता, अपितु परिस्थितियों का डटकर सामना करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से योग मनुष्य को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। योग का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना और उसे परम सत्य से जोड़ना है। यह मनुष्य को आत्मिक शांति, संतोष और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की अनुभूति कराता है तथा जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। संक्षेप में कहे तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर और मन को साधने का सबसे बड़ा मार्ग योग ही कर की ओर शांति की बनाए रखना है। एक योगी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग और जिम्मेदार होता है, जिससे समाज और राष्ट्र के विकास में उसका योगदान बढ़ता है। योग के माध्यम से जब देश के नागरिकों के व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो एक ऐसे समाज का उदय होगा जो सहिष्णु, अनुशासित और संवेदनशील होगा। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि योग को जीवन का अनिवार्य अंग बनाने से ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अंत में सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री अनुराग सोनी की वार्ता, विषय था व्यक्तित्व निर्माण में योग की भूमिका। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम 15 जून यानी आज मना रहा है यात्री सुविधा दिवस। इस विशेष अवसर के उपलक्ष्य के पूर्व एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह ने।
2: खासकर इसलिए बुलाई गई है कि चूंकि सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और उस 12 सालों में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, और उसी का सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग यात्री सेवा दिवस जो है सुविधा दिवस मना रहे हैं। और यात्री सुविधा दिवस जो है 15 जून को मनाया जा रहा है, और ये प्री इवेंट ब्रीफिंग है जिसमें उस इवेंट में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं आपके माध्यम से हम पूरे अयोध्या और आसपास जहां आपके दर्शकगण हैं उनको सबको ये इन्फॉर्मेशन चली जाए या ये जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। तो यात्री सुविधा दिवस जो 15 जून को हो रहा है उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जो पैसेंजर सेंट्रिक है, पैसेंजर्स के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला कार्यक्रम है हमारा यात्रियों का स्वागत हम कर रहे हैं। जो भी यात्री हमारे अयोध्या एयरपोर्ट पे आएंगे या यहां से जाएंगे उनका टीका लगाकर हम लोग ट्रेडिशनल वे में उनका वेलकम करेंगे, और इसी तरीके से एक वंदे मातरम का गायन जो है हमारे पूरा स्टाफ, पूरे स्टेक होल्डर्स, एएसएफ, एयरलाइंस सब लोग मिलके हम लोग वंदे मातरम का पूरा गायन करेंगे यहाँ पे एक ये कार्यक्रम। तीसरा कार्यक्रम हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है जो कि हम एयरपोर्ट पे भी वृक्षारोपण कर रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम करती है, उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। लगभग हम लोग क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड है तो 40-50 पेड़ हम लोग यहाँ लगाएंगे, और चूंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूलों में जाके भी कर रहे हैं। तो अभी हमने झुंझुनवाला जो कॉलेज है उसको उन्होंने हमें परमिशन दी है, तो वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलके हम लोग वहां पे भी वृक्षारोपण

0: कार्यक्रम उस दिन करेंगे।
1: किस तरह के पौधे
0: हैं? अलग अलग तरीके के पौधे हैं, जैसे अमरूद है या नीम है या इस तरीके के जो पौधे बड़े हों, मतलब सिर्फ डेकोरेशन वाले पौधे नहीं है उसमें, जैसे फलदार भी है और कुछ है, तो इस तरीके के पौधे। और इसमें एक और नई पहल हमने की है कि जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे उस दिन, हम उनको फ्री में पौधे जो है गिफ्ट करेंगे। तो जो भी यात्री आएगा उन्हें जो भी वो लेना चाहेंगे उन्हें हम पौधे देंगे और वो पौधा जाके वो जहाँ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो वो भी एक कार्यक्रम हमने उनके लिए भी रखा है। जो हमारे यहाँ जैसा आप जानते हैं साफ सफाई एयरपोर्ट पे बहुत उसका ख्याल रखा जाता है और उस हाइजीन के लिए, तो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं, उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे उस दिन, क्योंकि उनकी वजह से ही एयरपोर्ट इतना साफ सुथरा रहता है, तो उन्हें भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। फिर हमारा एक और ये है कि हम पैसेंजर्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए भी स्वास्थ्य जांच शिविर जो है हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा रहे हैं, तो वो भी झुंझुनवाला ग्रुप के साथ जो कॉलेज है उनका मेडिकल कॉलेज है उसके साथ मिलके, हॉस्पिटल के साथ मिलके यहाँ पे फ्री चेकअप कैंप लगेगा। साथ ही साथ हम लोग सेल्फी पॉइंट एक बना रहे हैं जिसमें यात्री सुविधा दिवस की स्केच ऑफ द आर्ट वो बिल्डिंग भी रहेगी हमारी उसमें आएगी, तो एक सेल्फी पॉइंट होगा जहाँ पे यात्री आने जाने वाले यात्री अपनी सेल्फी ले सकते हैं, पोस्ट करेंगे वो अपने अपने ट्विटर हैंडल्स या जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। लोक नृत्य का भी प्रदर्शन, चूंकि अवध का एक लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, लोक संगीत इन लोगों तक जाए, क्योंकि देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ के कल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें लोकगीत, लोक संगीत और लोक नृत्य जो है पैसेंजर्स के एक सामने प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ पेंटिंग क्यूज और ड्राइंग की प्रतियोगिता भी हमने रखी है एयरपोर्ट के थीम पे, एयरपोर्ट फैसिलिटीज के थीम पे। जो भी यहाँ पे लोग काम करते हैं उनके बच्चे हैं या परिवार के जो भी सदस्य जो है उसपे कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग का एक हमने नई चीज ऐड करी है इसमें, मतलब जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको एयरपोर्ट पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कई बार लोगों को पता नहीं होता क्योंकि इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, तो उनको यहाँ पे हम लोग बताएंगे, बुला के आमंत्रित कर रहे हैं हम कई कॉलेजेस के बच्चों को और आप लोगों के माध्यम से भी, जो भी बच्चे आएंगे उनको हम कैरियर काउंसलिंग का यहाँ पे एक सेशन रखते हैं, उनको वॉक थ्रू भी कराएंगे, टर्मिनल बिल्डिंग का पूरा बताएंगे क्या चीज कहाँ होती है, और साथ ही साथ कैरियर में एयरलाइन में क्या अपॉर्चुनिटी है, सीआईएसएफ में क्या अपॉर्चुनिटी है या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में भी उन्हें बताया जाएगा। हम साथ ही साथ प्लास्टिक मुक्त वातावरण के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक भी करने जा रहे हैं जो पैसेंजर्स के लिए होगा, और ये जो है कई कॉलेजेस से बच्चे इंटर्नशिप हमारे यहाँ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उन बच्चों ने इस नाटक को, नुक्कड़ नाटक को प्रिपेयर किया है, तो प्लास्टिक मुक्त वातावरण के प्रति जागरूकता नाटक का एक नुक्कड़ नाटक होगा। एक नुक्कड़ नाटक हमने एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी विषयों पर भी दिया है कि कई बार पैसेंजर्स जो है उनको कई कुछ पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि इतना बैग क्यों ओपन करवा रहे हैं या सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों है, तो इस सब चीजों के बारे में भी उनको थोड़ी सी जानकारी हो, तो उसके ऊपर भी एक नुक्कड़ नाटक रखा गया है। साथ ही साथ हम वुमेन्स को सम्मानित कर रहे हैं, जो भी एयरपोर्ट पे वुमेन्स काम कर रही हैं उनमें से कुछ वुमेन्स को हम लोग यहाँ पे सीआईएसएफ है या एयरलाइंस है या जीएचए है या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वुमेन्स एम्प्लॉई हैं उनको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। तो ये लगभग 12-13 एक्टिविटीज हैं जो हम उस दिन पूरे सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटीज करने जा रहे हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम में मनाए जाने वाले यात्री सुविधा दिवस के पूर्व हुई प्रेस ब्रीफिंग, जो कि डायरेक्टर एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह ने की। और इसी के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या यहीं संपन्न होता है।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरी आई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91-61-877-347।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर,
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: हेलो
7: सुनो, टेलीफोन नंबर,
8: माय नंबर इज
0: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
9: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
10: नहीं अछूता हो
9: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
11: कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश, आपके गीत और आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त नेहा। दोस्तों, ढेर सारे संदेश जो है वो आपके हमें मिलते हैं दूर दराज से, और इससे पता चलता है कि आकाशवाणी अयोध्या के लिए आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, वो कितना गहरा है। और इसी गहराई को नापते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला और पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए संदेशों को। तो पहला जो संदेश आया है हमारे पास, वो आया है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जिगर से ये गीत। तो आप सभी की पसंद का जो गीत है वो आप सभी के रेडियो सेट पर बजने जा रहा है। तो लीजिए, एंजॉय करिए ये प्यारा सा गीत साधना।

कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत और आपके साथ है आपकी दोस्त नेहा। और अगला जो संदेश हमारे पास तक आया है वो आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से। लिखने वाले हमारे श्रोता है सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना। आप सभी ने सुनना चाहा है धर्मवीर फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत, और कार्यक्रम में जो अगला संदेश आया है वो जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे पास तक आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म साजन से ये प्यारा सा गीत।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में। और अगला जो संदेश है मेरे पास वो आया है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। लीजिए सुननी आप अपनी पसंद पर कुमार सानू की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में अगला जो संदेश है वो हमारे पास तक आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। लिखने वाले हमारे श्रोता है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद और चाहत। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म शिखर से उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
3: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
2: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
3: और साथ में अपना नाम, पता
2: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
3: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
4: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
7: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
8: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
7: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
8: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
7: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या में, और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नेहा, और कंट्रोल रूम से हमारे साथ है हमारे साथी स्वप्निल मिश्रा। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम का सिलसिला, और 7376408090 वो नंबर है जिसको डायल करके आप भी बन सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा, और हमारे कोई श्रोता इस कार्यक्रम का हिस्सा बन भी चुके हैं। हेलो,
9: पूरी आकाशवाणी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और नेहा मैम आपको भी मेरा प्यार से बहुत बहुत भरा नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और ढेर सारा स्वागत है आपका आकाशवाणी अयोध्या के इस फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। तो बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में?
9: जी मैम, आपकी फिल्म रहेगी हम आपके हैं कौन, इस फिल्म का कोई भी सॉन्ग चला दीजिए।
0: हम आपके हैं कौन,
9: जी हाँ जी।
0: तो इस समय क्या कर रहे हैं?
9: मैम आपको और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। कपिल देव ने कॉल लगा दिया बड़ी ही श्रद्धा से, गांव सिरसिंगा पोस्ट सरारा से मैं बोल रहा हूँ, जिला अयोध्या से।
0: क्या बात है, आपकी आवाज में वो जादू है कि कार्यक्रम और भी प्यारा और भी सुहाना बन जाता है।
9: तो यहाँ पहले मैं क्रिकेट की कमेंट्री करता था, तो वही मतलब आदत पड़ी हुई है इतना स्पीड में बोलने की।
0: और बहुत अच्छा फ्लो है आपकी वॉइस में, और बहुत ही मीठी सी आवाज है आपकी।
9: क्या मैम, बहुत अच्छे, धन्यवाद मैम, आपकी भी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सबसे प्यारे एंकर हैं हमारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जितने भी उद्घोषक है आकाशवाणी अयोध्या के, सब दिलो जान से आप सभी के लिए ही कार्यक्रम तैयार करते हैं, और

0: इस कार्यक्रम में आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गाना
1: फिर से आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

0: दोस्तों, कुछ रिश्ते आवाज से नहीं एहसास से जुड़े होते हैं और आज यही एहसास हमें और आपको जोड़ रहा है कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। और 7376-8040-90 ये वो नंबर है जिसे डायल करके आप भी जुड़ सकते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम से और हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। अपना नाम और पता बताएं।
1: मैडम, हम त्रिदेव लाइट वाले बोली हरिपुर जलालाबाद।
0: जी, हरिपुर जलालाबाद से। नाम आपका?
1: हमारा नाम है त्रिदेव है।
0: अच्छा, त्रिदेव जी। त्रिदेव जी, आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हमें कुली का गाना सुना दिया आज।
0: फिल्म कुली का?
1: कुली है, अमिताभ बच्चन वाली।
0: जी, अमिताभ बच्चन की कुली। तो आपको बहुत पसंद है अमिताभ बच्चन?
1: नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अब पसंद तो गाना वहाँ है।
0: अच्छा, गाना पसंद है। क्या करते हैं आप?
1: हम, हमारा लाइट का काम है।
0: अच्छा, लाइट का काम है का। तो क्या क्या चीजें आपके यहाँ मिलती हैं?
1: जी,
0: क्या क्या चीजें आपके यहाँ मिलती हैं लाइट का काम है?
1: तो लाइट का पूरा सिस्टम है।
0: अच्छा, पूरा सिस्टम है
1: जी।
0: कुली फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं कोई अल्लाह करके है।
0: कोई अल्लाह करके है।
1: अल्लाह हो, अल्लाह हो, कोई काफी काबा कहाँ जाते हैं भैया, लगाना है।
0: आपकी पसंद का जो गीत है, अगर आप मुझे शुरुआत से बता देते तो मुझे ढूंढने में आसानी हो जाती। चलिए, कोई बात नहीं है। आपको हम फिल्म कुली का गीत सुना रहे हैं और लीजिए, एंजॉय करिए अपनी पसंद का गीत। आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त नेहा और रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए पर कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और आप हैं अपनी दोस्त नेहा के साथ, तो कीजिए कॉल 7376 80 40 90 इस नंबर पर और जुड़ जाइए इस शानदार से कार्यक्रम के साथ। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं मध्य प्रदेश रीवा जिला गुड़ कटरा से बोल रहा हूँ।
0: जी नाम आपका?
2: अनुसुईया दास।
0: अनुसुईया जी, चलिए।
2: हम गांव अवधम रहते थे, अभी गांव आ गए हैं।
0: अच्छा अच्छा, गांव गए हुए हैं अभी आप, तो गांव का मौसम कैसा है?
2: बहुत अच्छा, हम बहुत बारिश हो रही है अभी।
0: अच्छा, तो मतलब मौसम तो अच्छा खासा ठंडा हो गया है आपके यहाँ।
2: जी जी।
0: कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनेंगे? जी जी, आपसे हमारी बात पहले भी हो चुकी है,
2: डेढ़ महीना बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी, काफी दिनों बाद बात हो रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में अब आपकी कॉल तो लग चुकी है, तो गीत कौन सा आप सुनना चाहेंगे?
2: आप सुना दीजिए, बड़े घर की बेटी।
0: बड़े घर की बेटी से?
2: जी, जिनका घर होता है देखा जिनको से बड़ा है।
0: और इस समय

0: और क्या कर रहे हैं वहाँ पर?
1: यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बैठे खाता हूँ।
0: अच्छा खाते हैं, तो गांव में घर पे और कौन कौन है आपके?
1: मेरे भाई है, भौजाई है, भतीजा है।
0: चलिए, इस समय यानी कि पूरे परिवार का स्नेह आपको मिल रहा है।
1: माता पिता गुजर गए।
0: जी जी, चलिए, भाई है, भाभी है आपकी, बच्चे हैं, तो इससे आपका जो मन है वो घर में काफी अच्छा लग रहा होगा और मौसम भी अच्छा हो चुका है।
1: डेढ़ साल से गांव में रहते हैं, जी जी, डेढ़ महीनों हो गए गांव में है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, परिवार का साथ भी बहुत जरूरी होता है अनसुया जी।
1: जी,
0: आपके पसंद का गीत हमने क्यों कर लिया है, आइए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: जिनका घर।
1: अगर रास्ते थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि मंजिल बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता आपका खुद से होता है। और आपका जो रिश्ता है आकाशवाणी अयोध्या से, वो बहुत ही प्यारा है। और इस रिश्ते को बनाइए और मजबूत करिए। 73 76 80 40 90 इस नंबर पर कॉल और जुड़ जाइए इस प्यारे से कार्यक्रम हेलो अयोध्या से। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं रुपेश कुमार तिवारी मोई कला अयोध्या से बोल रहा हूँ।
1: जी रुपेश जी, तो सबसे पहले तो बहुत ढेर सारा स्वागत है और बधाई भी हो आपको कि आपकी कॉल आज के कार्यक्रम में लग गई है। तो कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
2: मेरा फेवरेट गाना है फना का टाइटल सॉन्ग।
1: फना का टाइटल सॉन्ग,
2: जी मैम।
1: क्या करते हैं रुपेश जी आप?
2: बस थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, गांव में ही रहते हैं मैं।
1: चलिए, गांव का तो मौसम बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में भी और ठंडियों में भी।
2: हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है
1: जी। और गांव के लोग भी बहुत प्यारे होते हैं, आपस में सभी त्योहार मिलकर मनाते हैं और शाम को बैठक भी हो जाती है सबके पास में। वरना शहरों में कहाँ टाइम है किसको किसके साथ जाने का।
2: किसी को टाइम नहीं आता फिर जी।
1: तो गाँव की तो जो खूबसूरती है वो तो है ही है भाई। पेड़ पौधे ढेर सारे मिलते हैं आपको, फल आपको, सब्जियां शुद्ध मिलती हैं।
2: जी मैम
1: जी, तो गांव में रहना तो बहुत अच्छी बात है।
2: ये गाना मैं कुछ आदमियों को डेलीगेट करना चाहता हूँ अपने परिवार में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, नाम बताइए।
2: हमारे पापा जी हैं श्री उमा शंकर तिवारी, हमारी माता जी हैं सुधा देवी
1: जी,
2: और हमारे छोटे भाई हैं ब्रजेश तिवारी, बेटा शशांक तिवारी, प्रशांत तिवारी वैशाली
1: जी,
2: और सुषमा तिवारी कंचन को मैं ये गाना डेलीगेट करना चाहता हूँ
1: जी। तो ठीक है, आपके इन सभी लोगों के लिए ये प्यारा

0: संगीत आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम हेलो अयोध्या की तरफ से आप सभी के लिए। आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है, बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और आप हैं अपनी दोस्त नेहा के साथ। आपकी आवाज इस कार्यक्रम की असली शान है, तो बनाइए अपनी आवाज को इस कार्यक्रम का हिस्सा। कीजिए 73 76 80 40 90 इस नंबर पर कॉल। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं रिंकी सिंह की बात कर रहे हैं, रायबरेली से।
0: जी रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम आदमी खिलौना का सुना दीजिए, बहुत जताते हो चाहे।
0: आदमी खिलौना है का आज गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जी मैम।
0: क्या करती है रिंकी जी?
1: मैम घर पे रहते काम करते हैं और साथ में रेडियो सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, घर का काम आपको सारा आता है?
1: जी मैम बिल्कुल आता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम इंटर फाइनल किया है।
0: अच्छा, इस बार इंटर फाइनल था या फिर पहले आपने किया है?
1: मैम एक साल पहले किया है।
0: अच्छा, एक साल पहले किया है, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन क्यों नहीं लिया रिंकी जी?
1: मैम कुछ परेशानियां थी तो इसीलिए मतलब आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई हमारी।
0: चलिए हिम्मत और हौसला बनाए रखिए, हालात जो है वो जल्दी ही अच्छे हो जाते हैं अगर बुरे होते हैं तो। और
1: जी मैम,
0: कार्यक्रम में आपका जो पसंद का गीत है वो हमने क्यों कर लिया है, आइए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। कार्यक्रम में आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और आप हैं अपनी रेडियो दोस्त नेहा के साथ। तो देर ना करिए, करिए 73-76-40-90 पर कॉल और जुड़ जाइए इस प्यारे से कार्यक्रम के साथ। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: क्या नाम है और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं सोनाली।
0: सोनाली, सोनाली कहाँ से बोल रही हैं? मलेथू कनक से। सोनाली जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम, दिल है तुम्हारा मेरा, मतलब वो वाला एक सॉन्ग जो है।
0: कौन सा?
1: कभी हंसना है कभी रोना है।
0: कभी हंसना है कभी रोना है सुनना चाहती हैं? क्या करती हैं सोनाली जी?
1: हम पढ़ाई करते हैं, 7th क्लास में है। तो
0: अच्छा, 12th में है, वही मुझे लगा कि आप तो बहुत छोटी हैं अभी। तो 12th आप पेपर हो गया है आपका?
1: मैं अभी नहीं, अभी।
0: अच्छा, तो सोनाली जी, आपकी पसंद का गीत जो है हमने क्यों कर लिया, आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू।

और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपने दोस्त नेहा को इजाजत। और आज के इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया स्वप्निल मिश्रा ने।

0: थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जिसे हमारे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बज रहे हैं और अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें

0: जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों के, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे। ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा,
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहाँ पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी
1: तो बड़ी
0: भी अपनी दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास।

0: उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया, वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
1: मित्र जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
0: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
1: जी जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी ने?
0: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है,
1: खूबसूरत,
0: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो,
1: क्या बात है, क्या बात,
0: तो मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहां हम थे, ना जाने कहां तुम
1: थे,
0: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
1: क्या मेरा प्यार
0: पसंद है, तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
1: बहुत स्वीट,
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत,
0: हर पल के, तो ये रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जनजन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सबने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है
1: जी। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे, दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बू, काले नहीं, सफेद
0: सफेद,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ, तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा।
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।

0: जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ।
0: जी मित्तल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी। और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होंगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी।
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी।
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
0: लक्ष्मी के, नवरात्रा में बनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
0: जी,
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
0: जी, जी, जी।
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
0: अच्छा।
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
0: जी,
1: गई
0: जी।
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया।
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु के और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।

तुमसे खेना जग नदिया में बंदे अपनी ना कभी धूप कभी छांव कभी धूप तो कभी छांव सुख

0: तो कभी छा।
1: मिथुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊँ कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ड्राइंग करते
1: रहे। तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा है, अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग,

0: दूसरा वाटर कलर, उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है. आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना वो अच्छा लगता है. कहीं पर आप बंधते नहीं हो. अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहां बंध जाते हैं
1: जी,
0: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो.
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर.
0: वही तो, वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है.
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
0: आपको
1: आर्ट...
0: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ.
1: अच्छा जी.
0: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ. मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा.
1: जी जी जी.
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ. लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ. तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है. तो लोग आते हैं, देखते हैं. अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं.
1: बहुत बड़ी बात. आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है.
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा. तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहां पर. आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं.
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप.
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं.
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत.
0: जी.

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं, या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कॉन्सेंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का, सभी तरह के।
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपने

0: पेंटिंग बनाइए।
1: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं।
1: बहुत सुंदर।

0: नीतू जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर की आजू बाजू रहती हैं
1: और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे चोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान, तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही है?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं और इतना आश्चर्य।

0: हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है
0: जी। जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है,
0: अच्छा
1: है ना, जैसे ब्राउनी है,
0: हाँ,
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके
1: नाम है, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिन टिन है तो दूसरा है चिन चिन।

0: हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है
0: जी। जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है,
0: अच्छा
1: है ना, जैसे ब्राउनी है,
0: हाँ,
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके
1: नाम है, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिन टिन है तो दूसरा है चिन चिन, जैसे चुन चुन भी है, सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, सो ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।

0: चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल जी, वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में?
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
0: जी। बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनके जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से, और आज की बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में

0: फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
4: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ मैं हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, दिन कोई भी हो सुहाना सा ही लगता है जब तक हमारा मन अच्छा है। जब मन दुखी होता है तो फिर चाहे बाहर कितनी भी खुशियां हो लेकिन हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते क्योंकि मन सुखी नहीं है। तो मन को खुश रखना जरूरी है, उसके लिए मन की शांति जरूरी है। तो आइए इसी बात के साथ आज के इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं। मिश्र संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सबसे पहले आज सुनवाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी ये कविता, जिसे सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने और अपनी मीठी आवाज में इन्होंने इसे गाया है जगजीत सिंह ने ही, और एल्बम का नाम है नई दिशा।

और आइए अब जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये गजल। एल्बम का नाम प्यार का पहला खत। इस गजल को लिखा है हस्ती ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में। एल्बम का नाम दिल झूम झूम नाचे, गीत और संगीत ललित सेन का।

देखा है तेरी आंखों को, इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना, आवाज और शब्द रचना साधु की, और इस गीत को सुरों में ढाला ललित ने।

शान का गाया और लिखा गीत आपने सुना तन्हा दिल। इस एल्बम से राम संपत ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और एल्बम का नाम दीवाना।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज़।

सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है राघव सचर ने और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने। इस गीत को लिखा है आदित्य धर ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए नक्शलायलपुरी का लिखा ये गीत, ललित सेन ने सुरों में ढाला है और एल्बम का नाम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लकी अली का गाया गीत आपने सुना, उन्हीं के संगीत निर्देशन में सईद असलम के बोल थे और सिफर था एल्बम का नाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू ही मेरे रब की तरह है, इस एल्बम से गीत सईद कादरी के बोल है और गोल्डी का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल।
1: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
3: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें,

0: साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
0: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
0: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
0: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लैवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी।
0: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लैवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
0: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जो कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
0: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय हैं, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहां सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा, और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपन्ड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
0: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है, तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको

0: अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था। और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ईजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था। बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद बड़े हाउसेस तो अलग बात है लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स के उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में यहाँ पर 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
0: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा होगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का

0: यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटकर के सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा, और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी,
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं। हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी मैन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो Bio-E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया था, क्या था वूंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है, जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है, और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बहुत ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमता है। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं, बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है, और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे हमारे डिफेंस

0: इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए, लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए
1: जी।
0: और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है
1: जी।
0: अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ यह है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे
1: जी,
0: तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बढ़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, एआई इनोवेशन सेंटर्स, एआई फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है, खतरे का बायस तो ही है लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज। और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा, वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा

0: समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयाज, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरी कल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरी कल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
5: Thank you for having me.
4: I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
5: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with say something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
4: Ashish, you know, you mentioned SIPs is so true because now almost every pin code is covered by the State Bank of India Mutual Fund. So that tells you how big the footprint has become.

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार की 12 साल। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम का पहला गीत चंचल सांडल की आवाज में।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: एक पूर्वी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लीला बनर्जी और सखियों की।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ऋतु पर्णा बर्मन और सखियों की आवाज में।

0: शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

आप सभी सुनने वालों का स्वागत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमारे पास संदेश पहुंचा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा का। भाकर पंजाब से संदेश भेजते हैं मोहम्मद हफीजुर रहमान और सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से संदेश आया है। गंज डुंडवारा से संदेश भेजा है शमसुल कमर राही ने और आजमगढ़ क्षमा कीजिएगा अहमदगढ़ मंडी पंजाब से संदेश भेजते हैं अनवर अंसारी। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप कुमार, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन का। सुभाष गोदारा संदेश भेजते हैं गांव हीरा वाली फजल का पंजाब से और ये संदेश आया है लधान पंढरिया छत्तीसगढ़ से राघव बघेल का। और अगला

देश अजीत कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से और हम पहुंचा रहे हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म खानदान का ये गाना जिसे आवाज दे रहे हैं सुलक्षणा पंडित।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारे फेसबुक पर किन किन नए श्रोताओं की संदेश पहुंचे हैं और वो संदेश किसके हैं। उदयपुर राजस्थान से संदेश भेज रहे हैं बाबू भाई और धीरज भाई रावरी ने संदेश भेजा है पाटन गुजरात से। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से संदेश भेजा है सोपान ताइडे ने और अगला संदेश मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार का। जयपाल यादव लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से संदेश भेज रहे हैं और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से संदेश भेजा है ताज अंसारी ने और ये संदेश आया है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा का बालूचा का चिया और बेरडी मध्य प्रदेश से संदेश आया है हुकुम करमरकर का और अगला संदेश रेडियो मित्र रणधीर गुप्ता का लेकिन इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है। फिलहाल आप सबकी पसंद पर हम पहुंचा रहे हैं फिल्म मन का ये गीत जिसे आवाज दे रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

दोस्तों अगले गीत के लिए संदेश हमारे पास पहुंचा है शनिवार पेठ बीड शहर महाराष्ट्र से पोपट राव कुलथे का और अगला संदेश रूपेश संघई ने भेजा है परभणी महाराष्ट्र से। इसी गाने के लिए संदेश हमारे पास पहुंचा है हिंगड़ी आलूट जिला रतलाम से राज्य मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ का और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है मीका विर्क का गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। अगला संदेश हम पढ़ रहे हैं चनूरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा का और लक्ष्मण लोखंडे ने संदेश भेजा है गड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संदेश भेजते हैं संतोष खड़ से और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी और अगला संदेश पहुंचा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल का और ये संदेश है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा का। तो आप सबकी पसंद पर हम पहुंचा रहे हैं गाना फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म से और आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

दोस्तों अगला गीत सुनने से पहले एक आवश्यक सूचना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, उत्साह और जोश का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा बच्चा जो भारतीय नागरिक हो तथा भारत का निवासी हो, वह इसमें प्रतिभाग कर सकता है। आयु सीमा 31 जुलाई 2026 को प्रतिभागी बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का कार्य, घटना और उपलब्धि नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर की होनी चाहिए। विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31/7/2026 है। बच्चे स्वनामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। ये पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

शुक्रिया दोस्तों, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जो आधारित है फेसबुक पर और कार्यक्रम का नाम है कुछ तुमने कहा। और आज आपके साथ है आपका दोस्त रेडियो हमसफर गिरिजेश निषाद। और अब ये सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले संदेश किस किस ने हमारे पास भेजा है उसको हम पढ़ देते हैं। नथाना पंजाब से संदेश भेजा है अरजिंदर छिंदा ने, और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है दातार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, सालार पहलगाम कश्मीर से संदेश भेजते हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, और अगला संदेश पुखराज बड़गुजर ने भेजा है ज्योति नगर नोखा राजस्थान से। और ये संदेश भेज रहे हैं अशोक बब्बर राम सिंह पुर श्री गंगानगर राजस्थान से। अगला संदेश बुद्ध नगर खंडवा से नदीम भाई का, और किशन सकपाल ने संदेश भेजा है शास्त्री नगर बीच शहर से। जाखोद राजस्थान से संदेश आया है शंभु दयाल का, और मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज ने संदेश भेजा है, और ये संदेश आया है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर का। तो आप सबकी ख्वाहिश है फिल्म आप आए बाहर आई फिल्म का इस गाने को सुनने का, तो हम पहुंचा रहे हैं आप तक मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

और दोस्तों अगले गीत के लिए संदेश हमारे पास पहुंचा है रायपुर अनेई जिला बनारस से इरशाद अहमद का, और इसी गाने के लिए ये संदेश भेज रहे हैं गुद्दनपुर जगदीशपुर बस्ती से आशीष बारी।

तेलंगाना निजामाबाद से संदेश आया है शेख अल्लाह बख्श का और गुरमीत सिंह मीता ने संदेश भेजा है साउथ दिल्ली से। कोल सिटी बरका काना से अल्फाज क्षमा कीजिएगा अफजाल ताज का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है। भटनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से संदेश भेजते हैं ईश्वर लाल मेहर और खुर्जा उत्तर प्रदेश से संदेश आया है अंकुश अरोड़ा का। डुमराव बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और बांदा उत्तर प्रदेश से संदेश भेज रहे हैं फहीम मंसूरी और ये संदेश आया है सदर बाजार कुरावली से। तो जी हाँ, इसमें हमारे श्रोता का नाम नहीं है। फिलहाल गाना हम आप सबकी पसंद पर पहुंचा रहे हैं, फिल्म ड्रीम गर्ल का ये गाना जिसे आवाज दे हैं किशोर कुमार।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: रावत का रामपुर हल्द्वानी उत्तराखंड से। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है संजय मार्कंडे का बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से। अगला संदेश है शंकरपुर उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव का। कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा जेटली इसी गाने को सुनना चाहते हैं। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार का। कोह का भिलाई छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं प्रताप पांडे। और गुजरात गांधीनगर से संदेश आया है प्रवीण सोनी का। पंचकुला चंडीगढ़ से संदेश भेज रहे हैं तुलसीदास। और जी हाँ, इनका पूरा नाम है तुलसीदास चुग मस्कीन। और सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़। और अगला संदेश है बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा का। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आंधी का ये गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
0: और फिल्म आंधी का ये गाना पहुंच चुका है आप तक लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

इस बुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अगले गीत के लिए संदेश हमारे पास पहुंचा है गंगा सिंह राव।

और दोस्तों हमारे पास कुछ और संदेश पहुंचे हैं। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से मसरूर हसन का मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से संदेश भेजते हैं दिलशाद हुसैन। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है बिरडी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से नाना लामसे का। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन से संदेश भेजा है प्रवीण श्रीमाली ने। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से संदेश भेज रहे हैं रजाक मोहम्मद। और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से संदेश आया है पी एस नौकर का। जून वानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू ने संदेश भेजा है। और रघुवीर नगर से दिलावर खान ने गाने को सुनने की इच्छा जाहिर की है। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर का। तो आप सबकी पसंद पर हम पहुंचा रहे हैं फिल्म बाबू का ये गाना, जिसे आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर।

0: और दोस्तों अगले गीत के लिए संदेश हमारे पास पहुंचा है जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूड़त का। वर्डिंग खेड़ा पंजाब से संदेश भेज रहे हैं आर कुमार। मालियान सरधना मेरठ से संदेश आया है अनिल जैन का। अकोट से विनायक बेंडी और सुरेश जयसवाल ने संदेश भेजा है जमानिया जिला गाजीपुर से। अगला संदेश पहुंचा है जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त का और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से संदेश भेजते हैं बबलेश पवार। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से संदेश आया है बालकृष्ण शर्मा का और पटेल नगर मलोड से रमेश कुमार जजूरिया और ये संदेश पहुंचा है बनवारी जयपाल का। इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है। फिलहाल इनकी सबकी पसंद पर हम गाना पहुंचा रहे हैं फिल्म डॉन का। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की बात। सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो जिस
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन

0: जीना है।
1: फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा कार्यक्रम का आखिरी गीत के लिए संदेश हमारे पास पहुंचा है। दोस्तों मेरठ से दिग्दर्शन का श्री कृष्ण बाठे ने संदेश भेजा है थाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से, और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है कालका से शुभ चंद्र बजाज का। बुलंदशहर से इसी गाने के लिए संदेश भेजते हैं उमेश कुमार गौड़। सुरेश गगनेजा ने संदेश भेजा है जलालाबाद वेस्ट से। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी ने नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा है, और खैल बाजार पानीपत से संदेश आया है नरेश मल्होत्रा निट्टो का। अगला संदेश है संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा का संदेश पहुंचा है। और आखिरी संदेश लोहरदगा जिला बागपत से संदेश भेज रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापति। तो आप सबकी पसंद पर हम पहुंचा रहे हैं फिल्म अपनापन का ये गाना, जिसे आवाज दे रहे किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की गए फिल्म अपनापन के इस गाने के साथ ही हमारा आज का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा जो आधारित था फेसबुक पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में ठीक 2 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम RHL गोल्ड टीम टीसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत एल्बम से सौम्या राव की आवाज में।

0: आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: दोस्तों, दो दिन पहले हुई बारिश ने उमस काफी बढ़ा दी है और ऐसे में जरूरत है आपको इस धूप से, गर्मी से बचने की। और खास तौर से आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपड़े से ढके रहें और छाते का प्रयोग करते रहें। फिलहाल अगला गीत हमने आप तक पहुंचा दिया है रवि शेरगिल की आवाज में, सुने।

दोस्तों, इस तेज धूप से आप बचने की बहुत जरूरत है और इसके नुकसान से आप वाकिफ भी हैं। जी हाँ, उच्च तापमान में शरीर के आंतरिक अंगों विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचता है और शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है। तो जरूरत है इस तेज धूप से बचने की, बिना जरूरत के घर से बाहर न निकले। और अब अगला गीत हमने पहुंचा दिया है शंकर महादेवन की आवाज।

शंकर महादेवन के इस गाने के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे, प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सातवीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है।

0: इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं इस वर्ष मानसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय

0: दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त

0: किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों का बुलेटिन दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगना।

0: आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-168-377-347।
2: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर,
3: और व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: अंगना कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताजन और प्यारी सखियन का वंदना सखी की वाली से प्यार भरा नमस्कार। सखियो देखो, अपने अवध की संस्कृति में हमेशा से बड़े बुजुर्गन का भगवान के रूप माना जाता है, मुला आज के समय में कहूँ कहूँ अपने समाज में एक बहुत बड़ी कमी दिखाते हैं कि कुछ लोग अपने घर के बूढ़ बुजुर्गन का बोझ समझे लागत है। सखियो देखो, एक कहूँ से उचित न्याय है। हर साल 15 जून का यानी कि आज ही के दिन पूरी दुनिया में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसके उद्देश्य है कि हमारी सभी जागरूक हुई और अपने बुजुर्गों के साथ होए वाले दुर्व्यवहार का या उपेक्षा का रोक सकी। घर के बुजुर्ग अहे हमार शान, इनके सेवा करब है हमार ईमान। हाँ सखियो देखो, आजकल देखो कहूँ कहूँ दिखाई का मिलत है कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप का अकेले छोड़ देते हैं, उनके दवाई पानी और खाना पीना की नीचे से ध्यान ना रखते, और कहूँ कहूँ धन दौलत के खातिर उनके साथ ही गलत व्यवहार, मारपीट या गाली गलौज भी करते हैं, जो उनकी एक बहुत बड़ा पाप है। सखियो हमारी सभी का ये बात एकदम नाय भूले के चाहिए कि आज हम जैसन व्यवहार अपने बड़े बुजुर्गन के साथ ही करब, काल का हमारा लड़का बच्चा भी हमारे सभी के साथ वैसे नहीं करी। यही कि ताएं बूढ़े माँ बाप का दियोदलार, उनकी आशीष से ही संवरी संसार। सखियो अपने घर के बड़े बुजुर्गन का रुपया पैसा से ज्यादा आपके स्नेह, आपके प्यार, आपके आदर सम्मान और थोड़ी सी समय की जरूरत होते है, जिससे उनका यह बात के एहसास होते कि वह घर में फालतू ना है, उनके भी अहमियत है। सखियो जब हम

0: का समय देव, उनके लगे बैठब, उनसे बोलब बतियाब, उनके अनुभव का सुनब और घर के कोनो भी छोट से बड़े काम में उनके सलाह लेब तो उनके मन भीतर से फिर से हरा भरा हो जाई। जिनके अनुभव से सीखें हम सब बात, कबो न छोड़ब हम बुढ़ापा में उनके साथ। सखियों, बुढ़ापा जीवन के ऐसन मोड़ है जहाँ हर केहू के एक न एक दिन पहुँचहीन का है। यही खातिर हमार धर्म और कर्म दोनों यही कहते हैं कि हम अपने बूढ़ बुजुर्गन का पूरा मान सम्मान दी, उनका सुख दी। और सखियों, देखो आज के दिन हमें सभी का मिल के इस संकल्प लेवे की चाहिए कि अपने बुजुर्गन के आँखी माँ दुर्व्यवहार के नाते आंसू ना वे देव, उनका खुश रखे के पूरा प्रयास करब। और अंत में हम यही कहब कि बुजुर्गन का देव हम पूरा सम्मान, तब तो बढ़िए हमारे अवध किसान। और सखियो, देखो यही से जुड़ी एक तो कहानी भी आज अपने नियम हम लेके आए हैं जो उनकी बुजुर्गन पर ही आधारित है। शीर्षक है जीवन साथी और कहानीकार हैं प्रेम दुलारी बनी। तो हमें इनसे सुना जाए एक कहानी।
1: रात में खा पी कर सोए, भोर में दिल का दौरा पड़ा और 2 घंटे में ही कैलाश नाथ जी अनंत यात्रा पर चल दी। शाम और रात तक तीनों बेटे पत्नी व बच्चों सहित आ गए। अगले दिन ही अंतिम संस्कार हो पाया। सुधा जी व कैलाश नाथ जी शहर में अकेले ही रहते थे। कैलाश जी वकील थे, तीनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छी नौकरी कर रहे थे। सभी की शादी ब्याह भी निपटा चुके थे। उनकी पत्नी पूर्ण रूपेण घरेलू महिला है जो पति के बिना एक कदम भी न चल सके। अंतिम संस्कार के बाद सब शांत होकर बैठे थे। बाहरी सभी जा चुके थे, केवल परिवार ही था। त्रयोदश संस्कार व बरसी कब और कैसे हो, इसी पर विचार विमर्श चल रहा था। सुधा जी पास में चुपचाप बैठी थी। उनका दिमाग व शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उनके शरीर में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। उनकी नजरें अपने बेटों के चेहरों पर पड़ी जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हों कि कैसे होगा सब कुछ। सुधा जी उठी, अंदर से एक पासबुक व ATM लाकर बेटों के पास रख दिया। मुझे लगता है इसमें इतने रुपए हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जी माँ, कहकर बेटों के चेहरों पर सुकून छा गया। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट भी गया। पैसे पाकर बेटों ने व्यवस्था बड़ी अच्छी की थी। सुधा जी को तो होश ही नहीं था। हर पल कैलाश जी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे और आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें लगता था शरीर की पूरी ताकत जैसे किसी ने निचोड़ दी हो। भूख प्यास तो जैसे खत्म ही हो गई थी। हर आने जाने वाला उन्हें सांत्वना के 2 बोल बोलता तो उनके आंसू टपकने लगते। वे सोच नहीं पा रही थी कि उनके बिना उनका जीवन कैसे बीतेगा। उनके बल पर ही तो वे सारे दुख सुख हंसते हंसते झेल लेती थी। अब कौन उनका सहारा बनेगा। रात में सब कुछ निपटने के बाद सभी हाल कमरे में बैठे थे। बड़े बेटे विपिन ने माँ को संबोधित किया, माँ अब आगे क्या विचार है। सुधा जी ने चौंक कर बेटे की ओर देखा। मतलब ये कि अब पापा जी नहीं है तो आप अकेले कैसे रहेंगे, आपकी देखभाल कौन करेगा, आपका खर्चा कैसे चलेगा। दूसरा बेटा जतिन बोला, क्यों तुम लोग नहीं दोगे क्या, थोड़े थोड़े पैसे तुम लोग भेज देना, बाकी सामान कम करके ऊपर का हिस्सा किराए पर उठा दूंगी, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। सुधा जी ने बड़े भरोसे के साथ कहा, हम कहाँ से भेजेंगे माँ, हमारा खर्च खुद ही इतना ज्यादा है कि पूरा नहीं पड़ता। आपको तो पता ही है बड़े शहरों के खर्च। तीनों ने एक ही बात दोहराई। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। थोड़ी देर बाद विपिन ने ही सन्नाटा तोड़ा, माँ हम सबकी राय है कि ये घर बेच दिया जाए। अब इतने बड़े घर की आपको आवश्यकता ही क्या है, हम तो अब यहाँ रहने से रहे। मकान बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें कुछ मिलाकर या लोन लेकर हम अपना अपना फ्लैट ले लेंगे। आप बारी बारी हम तीनों के पास आकर रहना, आपका मन भी लगा रहेगा और एक जगह रहकर बोर भी नहीं होंगी। सुधा जी ने खिन्न होकर आंखें बंद कर ली। ईश्वर क्या गलती कर दी हमने जो आपने हमें ऐसी औलाद दे दी। बाप को मरे 15 दिन भी नहीं बीते कि इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वे सोचने लगी, सही कहते थे कैलाश जी कि सुधा हमारे बच्चे कभी हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी नजरों में हमारे लिए प्यार ही नहीं है, बस स्वार्थ भरा है। ये मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता रहती है। कहीं ईश्वर ने पहले मुझे ही बुला लिया तो तुम्हारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। नहीं जी, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, समय पड़ने पर सब कर लेंगे, आप बेकार में चिंता करते हैं। सुधा जी अपने पति को सांत्वना देती, लेकिन आज कैलाश

की शंका ही सच होती दिखाई दे रही थी। सुबह सुबह जब सब जाने लगे तो एक बार फिर उन्होंने दोहराया, माँ घर तो आपको बेचना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद ही सही, इस संपत्ति पर हमारा भी हक है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, देखा जाएगा, कहकर सुधा जी ने बात टाल दी। सबके चले जाने के बाद सुधा जी घर में अकेली रह गई। बहुत देर तक वह रोती रही, कोई कंधे पर हाथ रखने वाला भी नहीं था। आज तक कभी भी वो इस घर में अकेली नहीं रही थी, कोई एक बेटा या बहू कुछ दिन के लिए ही रुक जाते, लेकिन किसी को भी जरा सा भी ख्याल नहीं आया। सुधा जी बहुत देर तक सोच में डूबी रही कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकले, उन्हें कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था। सुधा जी तीनों बहुओं के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं, कोई भी बहू उनका मान सम्मान नहीं करती। उन्हें अच्छी तरह से याद है, जब बड़ी बहू कायरा का पहला बच्चा होने वाला था तो कैलाश जी सुधा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तब बेटे ने भी बड़े चाव से माँ को पत्नी व बच्चे की देखभाल के लिए बुलाया था। सुधा जी खुशी खुशी बेटे के पास गई थी। वहाँ उनकी बहू बच्चा होने के बाद सुधा जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगी। वह उनकी कोई भी बात नहीं मानती थी, उसकी माँ फोन में जैसा बताती वही करती। सुधा जी बच्चे की मालिश करती या नहलाती तो बहू तुरंत ही उन्हें टोक देती। वह बच्चे को लेकर उनके द्वारा किए गए काम को गलत बताकर अपमानित करती। सुधा जी द्वारा बनाए गए भोजन में प्रतिदिन रोक टोक लगाया करती। सुधा जी बहू को मेवा पीस कर पिलाना चाहती कि बहू का स्वास्थ्य सही रहे, वह उसमें भी उन्हें उल्टा सीधा सुना देती। कहती, इसे खिलाकर आप मेरे शरीर में चर्बी बढ़ाना चाहती हैं ताकि मैं भद्दी दिखूं। सुधा जी किसी तरह एक माह बिताकर चली आई, दोबारा फिर कभी नहीं गई। वही लोग कभी कदार दो तीन दिनों के लिए आ जाते थे। एक बार वे दूसरे बेटे के पास भी गईं, बेटा बड़ा जिद करके ले गया। वहाँ की लीला तो और भी विचित्र थी। बहू सास को एकदम देहाती व गंवार समझती थी, वहाँ तो उन्हें किचन में जाने तक की इजाजत नहीं थी, कहीं कुछ इधर उधर न कर दे, अपने आप वो चाय तक नहीं बना सकती थी। कभी कभी बाहर से भी ऑर्डर कर दिया जाता, वही खाना पड़ता। सुधा जी जब मना करती कि बाहर से मत मंगाओ, मैं बना देती हूँ, वह तुरंत ही तुनक कर कहती, आप तो रहने ही दो माँ जी, इतना तेल मसाले वाली चीजें खिलाकर हमें बीमार ही कर दोगी। बेचारी सुधा जी चुप हो जाती। वहाँ से 15 दिनों में ही वह लौट आए। सुधा जी की तीसरी बहू तो काफी हाई सोसाइटी वाली वह नौकरी वाली थी, उसके तो जलवे ही निराले थे, उसे तो सास ससुर दोनों ही नापसंद थे, वह उन दोनों को मिडिल क्लास के लोग बोलती थी। बहू के अनुसार सुधा को उसने मेहमानों को पानी पिलाने तक का तरीका नहीं आता, इस कारण वह सास को किसी के सामने निकलने ही न देती। तीनों बहुओं का ऐसा तरीका सोच सोच कर वह बहुत परेशान थी कि वह कैसे इन सबसे तालमेल बैठा पाएंगी। सुधा जी सोच रही थी अगर बेटों ने घर बेच दिया तो उन्हें हर हाल में इनकी बात माननी ही पड़ेगी, वह फुटबॉल की तरह तीनों के घर इधर से उधर लुढ़कती रहेंगी। बड़ी असमंजस में फंस गई थी सुधा जी, क्या करें क्या ना करें, इसी दुविधा में उनका समय बीत रहा था। धीरे धीरे 2 माह हो गए, तीनों बेटे अचानक से फिर आ गए। इस बार वे एक ब्रोकर को भी लाए थे जो मकान बिकवाने वाला था। बेटों के सामने सुधा जी की एक न चली, बेटों ने आखिर मकान का सौदा कर ही दिया। तीनों में से कोई भी उन्हें रखना नहीं चाहता था, ना ही वह जाना चाहती थी। तब बेटे विपिन ने कहा, जब आप हमारे में से किसी के साथ नहीं जाएंगी तो फिर जहाँ मन हो जाइए, हम कर ही क्या सकते हैं, फिर आप चाहे वृद्धा आश्रम जाएं या और कहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बच्चों के जाने के बाद वे सोच में डूबी थी। उन्हें एकाएक अपने भाई की याद आई और उन्होंने भाई को फोन कर दिया। उनके भाई राजकुमार दूसरे दिन ही आ गए। बहन की हालत देख उन्हें अपने भांजों पर बहुत गुस्सा आया, बहन के ऊपर नाराज भी हुए कि पहले क्यों नहीं बुलाया, मैं उनसे बात करता। भैया, इसीलिए आपको नहीं बुलाया, वो आपकी भी बेइज्जती कर देते, जो मैं नहीं चाहती थी। राजकुमार अपनी बहन को लेकर तुरंत ही चल पड़े। बोले, सामान बाद में ले जाऊंगा, पहले तुम मेरे साथ चलो, अब मैं एक पल के लिए भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार सुधा जी को अपने घर न ले जाकर वहाँ से थोड़ी दूर एक छोटे से घर में लेकर गए। सुधा चौंकी, भैया आप हमें ये कहाँ ले आए, किराए के घर में रखेंगे क्या, क्या मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। तब तक अंदर से उनकी भाभी भी बाहर निकल आए, किराए का नहीं दीदी, ये आप ही का घर है, आइए आपके घर में आपका स्वागत है। भाभी ने सुधा को गले से लगा लिया और अंदर ले गए। सुधा जी कुछ नहीं समझी, फिर भी वह बैठ गई तथा पानी पिया। इतनी देर में वहाँ कैलाश नाथ जी के मित्र
वकील श्यामधर दुबे भी

0: पहुँचे। प्रणाम भाभी जी, तहे दिल से आपका अपने घर में स्वागत है। सुधा जी को सब कुछ आश्चर्यजनक लग रहा था। मुझे आप सबकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। सब कुछ सच सच समझाइए, तब मैं कुछ समझूं। तब वकील साहब ने सुधा जी के हाथों में एक फाइल पकड़ाई और बोले, ये लीजिए अपनी अमानत। बहुत आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। तब वकील साहब ने फाइल खोलकर उन्हें दिखाया, देखिए ये रहा आपका नाम, है ना आप ही का नाम। ये घर आप ही का है भाभी जी। ये घर मेरे दोस्त कैलाश ने 8 साल पहले आपके लिए खरीदा था। और ये पासबुक भी है जिसमें 1 लाख रुपए जमा है, जिन्हें आप स्वेच्छा से खर्च कर सकती हैं। अभी तक मैं इसकी सुरक्षा कर रहा था, अब आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूँ। तब उनकी भाभी शांति आगे आकर बोली, दीदी आप कितनी भाग्यशाली हैं कि जीजा जी आपकी इतनी परवाह करते थे, जो आपके भविष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने ये कदम उठाया था। लेकिन भैया ये सब उन्होंने कब और कैसे किया, इतने पैसे कहाँ से आए उनके पास। सुधा जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। बहना तुझे याद है कुछ साल पहले जीजा जी बहुत ज्यादा बीमार पड़े थे, तब तुम्हारे बेटे व उनका परिवार सब देखने आए थे, परंतु किसी बेटे ने किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं किया था। उस समय जीजा जी बहुत परेशान थे, किसी भी बेटे ने एक बार उनसे उनकी परेशानी के बारे में नहीं पूछा। तभी उन्होंने मुझसे दादा द्वारा नेग में दी गई जमीन के बारे में बात की। जमीन बिक गई और घर बन गया। लेकिन भैया वो जमीन तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतों के समय मेरे बार बार कहने पर भी नहीं बेचा था। अब मैं समझी कि उनका अपनी औलादों पर से भरोसा क्यों उठ गया था। अब सुधा जी की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। इतनी ही चिंता थी जी आपको मेरी, तो अकेले क्यों छोड़ गए, वे बोलते हुए रोए जा रही थी। शांति ने उन्हें समझाया, दीदी वे आपके सच्चे जीवन साथी थे, जो अपने जाने के बाद भी आपकी चिंता करते रहे थे। मेरा तो यही कहना है कि हर जीवन साथी को एक दूसरे के भविष्य के लिए ऐसा ही कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए जो उनके बुरे वक्त में काम आए। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे जीवन साथी बहुत अच्छे मिले, जो अपने जाने के बाद भी मेरा भविष्य सुरक्षित कर गए। मेरी यही मनोकामना है कि ईश्वर सभी को ऐसा ही जीवन साथी दे।
1: सखियों, घर के बड़े बुजुर्ग हमें समाज की नींव और ज्ञान के भंडार होते हैं। उनके सम्मान करब हमारा नैतिक न्याय, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। वह हमें अनुभव, संस्कार और सही राह दिखाओ थे और जीवन जिए के ताएं, सुख शांति ताएं, सफलता के ताएं तरह तरह के राह दिखाओ थे, जो उनकी सही ही राह थे। उनके अनुभव हमारे ताएं बहुत ही महत्वपूर्ण होते। हमें उनके अपमान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना ही उनके साथ एक उन्होंने दुर्व्यवहार करनी चाहिए। और देखो प्रेम दुलारी बनी कितनी अच्छी से बुजुर्गन पर केंद्रित कहानी हमें सबका सुनाई। जीवन साथी जी के शीर्षक रहा। यह कहानी से हमें सबका सीख भी लेनी चाहिए और अपने भविष्य के ताएं अपन भाई व्यवस्था भी कहके रखे चाहिए और लड़कन का ऐसी संस्कार देख चाहिए कि वे बूढ़ बुजुर्गन का सेवा करें, उनके मान सम्मान करें और उनका ध्यान रखें। और सखियो देखो बात का तो और आगे बढ़ाओ को, लेकिन तनी रुक के।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मुझे नौ लखा मांगा दे रे ओ सैया दीवाने।
8: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा।
7: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
8: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
9: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
9: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
10: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
11: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
1: सखियों, अपने देश में और अवध में बिटियन का

0: लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। मुला कहूँ कहूँ उनके पढ़ाई लिखाई का लेके, उनके ब्याह के खर्चा का लेके मातारी बाप के मन में एक फिकर जरूर रहत है। यह फिकर का दूर करे के ताई अपन सरकार सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किए है, जो उनकी बिटिया के सुनहरे भविष्य के खातिर एक बहुत बड़ा और सुंदर भरोसा है। यह योजना में बिटिया का जन्म से लेके 10 साल के उम्र तक कोनो भी डाकखाना में या पोस्ट ऑफिस में या बैंक में खाता खुलवावा जा सकत है, जेमा हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बिटिया के बड़े होए तक एक बड़ी रकम मिलत है। ई खाता में जमा पैसा पे सरकार सबसे ज्यादा ब्याज देते है और टैक्स पे छूट मिलत है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पे कोनो बोझ नहीं पड़त। और आज सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाओ, बिटिया का खूब पढ़ाई लिखाई के आगे बढ़ाओ। सखियो देखो, बिटिया जब 18 साल के हो जाता है तो ओके आगे पढ़ाई यानी कॉलेज के खर्चा खातिर आधा पैसा निकाला जा सकत है और 21 साल होए पे पूरा पैसा बिटिया के ब्याह है या ओकरे जो सपना वो सजाए है या कोनो सपना देखे है पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ावे के है तो ओके सपनन का पूरा करे खातिर मिल सकत है। ई योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोनो भी पिता अपनी लाडली के जन्मते ही उकरे भविष्य का सुरक्षित करे के ताकत का मिल जाता है, जैसे बिटिया पराया धन ना बुलुक घर के असली ताकत बनत है। जब सुरक्षित रहे बिटिया के भविष्य तब तो खुशहाल रहे हमारे अवध के हर शख्स। सखियो हमारे सभी का ये बात नीचे से समझे के चाहिए कि बिटिया बोझ ना है, हमार अभिमान है। और आज ही हमें अपने घर की बिटियन के नाम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाई और उनका अपने पैर पर खड़ा हुए में उनके साथ दी। सुकन्या योजना है बिटिया के उपहार, इनके भविष्य समरी संवारी हमार संसार। और सखियो देखो, यही सुंदर संदेश के साथ ही आवे सुना जाए इस सुंदर सा लोकगीत भी गणेश कुमार सिंह की आवाज में।
1: अरे पापा दी सपना पूरा

0: सखियों में पूरी उम्मीद है कि ये गौने हमारे सगुन सखी लोगन का नीक लाग हुई। और देखा भौजी तो देखा कितना बढ़िया से गुनगुना दिए हैं, नीक लाग हुए तब है तो भाई। भाई देखो अपने बिटियन के पढ़ावे लिखाओ माँ, हमें सबका कोनो उम्र के कोनो तरीके के कोताही ना बरते चाहिए। कैसे देखो आज हमारे बिटिया कोनो भी क्षेत्र में पीछे ना आई, उनका पढ़े लिखे हर मौका उनका अपने सपना का पूरा करे पूरा मौका देख चाहिए। और सके देखो आज दिन है सोमवार, तो बात हुई घरेलू सुझाव में रेसिपी के, तो इमन हम आज बेल के शरबत बनाओ के विधि बताओ। सामग्री हमारे बहनी लोग लिख लिए, एक बन जो है बेल लेख है, बेल का गूदा एक बड़ी कटोरी, ठंडा पानी 4 से 5 गिलास ले लिए, चीनी या गुड़ 5 से 6 बड़े चम्मच, काला नमक जो है 1 छोटा चम्मच ले लिए, भुना जीरा पाउडर ले लिए 1 छोटा चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच अगर इच्छा हुए तो, और बर्फ का टुकड़ा जरूरत के अनुसार, और पुदीना की पत्ती सजावे खातिर ले लिए। और एक बनाओ एक नए सखियों जो है बेल लेके ओके गूदा निकाल लिए और गूदे का 2 गिलास पानी में डाल के 15 से 20 मिनट तक भिगोए के भिगोए दिए। और फिर जब गूदे का अच्छे से मसल लिए और जब ये मिश्रण तैयार हो जाए तब एक छन्नी से खूब बढ़िया से छान लें ताकि एक बीज वगैरह निकल जाए और खाली बेल के रस आ पावे। अब यमहा जो है गुड़ चीनी और काला नमक डाल दिए, भुना जीरा डाल दिए और नींबू के रस थोड़ा सा निचोड़ दिए इमन, और ठंडा कहके इमन जो है बर्फ का टुकड़ा भी डाल सकती थी अगर इच्छा हुए तो, और ना तो कोनो जरूरी ना है, ठंडा पानी काफ़ी है, मटके के पानी भी डाल के एक बनावा जा सकत है। और साथ ही पुदीना के पत्ती भी ऊपर से डाल के इमन बढ़िया से सजा सकती थी। और तैयार है आपके जो है बेल के शरबत। और एक फायदा के बात की जा सकी हो तो देखो ये शरीर का ठंडा राकत है, हमारे पाचन सही राकत है, लू से भी बचाव करे में मदद करत है और पेट का भी आराम देते है, और साथ ही ये एनर्जी भी बढ़ावत है। और ये गर्मी में ये ठंडा पेय के सेवन जरूर करें और स्वस्थ रहें। और यही के साथ ही देखियो सखियो भाई घड़ी भी इशारा करते हैं कि कार्यक्रम से भी विदा लेके समय होते हैं, तो यही बात है के साथ है कि अगले अंगना कार्यक्रम में नीक नीक गीत गाने और जानकारी के साथ है फिर भेंट मुलाकात की जाए। तब तक के ताई वंदना का दिन मती नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगना। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या

0: ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं। चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 से 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया।

0: और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।

0: पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
2: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
3: अप्पू,
2: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
3: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
2: उसका दम घुट रहा था।
3: बोल।
2: वो खामोश खड़ा रहा।
3: क्या नहीं बोलेगा?
2: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
3: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
3: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
3: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला।
1: वो कंचा।
3: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
3: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ।
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
3: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
3: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा

0: था।
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
2: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलू तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ, अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग

0: उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
0: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
0: बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
2: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है और अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
6: सिर्फ और सिर्फ चाहत होती कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
7: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
6: उन्हें वक्त दिया जाए। क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े या फिर ना घूमना फिरना या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
7: जी,
6: तो
7: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
6: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूक फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर हम जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
7: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
6: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम

0: उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं, तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ
0: काम कर रहे हैं,
1: ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनके मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है। उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहिए। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ लिखते हैं, वृद्ध जनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्ध जनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्ध जनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
1: है। वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: चूंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नैनी,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक

0: पहुंचाना, इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
1: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत, दीवारें और खिड़कियों में, कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि तेज बारिश में पानी जमा ना हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं, तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
0: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
1: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
0: इसलिए फिर वो जो है ना, जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है, जो बोतल्स वगैरह है और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत, सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर, छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
1: बिल्कुल, एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे। नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
0: बिल्कुल, करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
1: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ.
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सके. तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है. लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त चीजें.
0: यानी अभी गर्मी में तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है. पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूरी हो, आलू की सब्जी हो,
1: सोनाली जी अब तो आप और नाम मत लीजिए.
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाईयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाईयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है. इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है. ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है. दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है. ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है. स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है. नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है. और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी.
0: और वो ना दोनों में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा. और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, फिर खाया नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाईयो खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह.
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं. इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है. मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है. ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है. इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी. आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है. बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है. आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं. मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले. इस वीडियो में हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है.
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना, वो कड़क
1: रहती है, जो खाने में भी मजा आता है.
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है. पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए. तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का
0: नमस्कार.

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ होता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यह संगीतमय वातावरण

0: बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधु

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है,
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है, फास्टिंग हो गया है, तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर,

0: वॉक वगैरह करके आएं, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आएं, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
1: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
0: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं, तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए। शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द

0: दोस्तों गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने जैसे सुबह काल का तो बताया था,
1: मैंने
0: बताया
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे जनरेशन है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है,

0: नहीं खा पा रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कड़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घुट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है। आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लगे रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घुट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता
1: है। और कहा भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया, और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी।

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की। विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शीतलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक
1: का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो

0: हमारे इमोशंस को बहुत हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी, जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहा गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या-क्या किया
3: आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए, और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, को बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे। यहाँ रोज लिखिए, क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक

0: सिखाऊंगा। तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
1: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
0: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
1: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
0: विचलित करेंगी नहीं।
1: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहाँ पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
0: ये बात सही है। और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
1: जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
0: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
1: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
0: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
0: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
1: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम।

0: पम पम हंसो और हंसाया करो
1: उठे सब पे कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तेरे रम पम पम हंसो।
2: शारदा जी गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में है तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थी योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको, आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा
2: और फिर से अपना काम करें।
3: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।

0: जाएंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
0: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तुम्हें

0: सुनने वालों को जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए। तो
0: सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन।
1: हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा सिंह आपकी अपने रेडियो दोस्त लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और आज मैं आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आई हूं, और सबसे खास तो होने वाली है आज की चर्चा। जी हां दोस्तों, आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और इसी पे होगी चर्चा आज की। करियर गाइडेंस में आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा कृषि में AI और युवाओं का भविष्य। वार्ताकार होंगी निहारिका सिंह। उसके बाद रोजगार समाचार सेगमेंट में जानेंगे इस हफ्ते की वैकेंसीज के बारे में और बिल्कुल गीत भी सुनेंगे। तो फिर आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जब मैं सुबह घर से निकल रही थी तो मेरी नजर नुक्कड़ के एक घर पर पड़ी, जहां बरामदे में बैठी एक बुजुर्ग अम्मा अपनी कांपती उंगलियों से चाय का कुल्हड़ पकड़े बस सूनी नजरों से सड़क को देख रही थी। उस चेहरे पर झुर्रियां तो थी, पर उन झुर्रियों के पीछे एक गहरी खामोशी और अकेलापन भी था। क्या आपके घर में भी कोई ऐसी ही खामोशी रहती है? साथियों, आज तारीख है 15 जून। दुनिया इसे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाती है। भारी भरकर नाम है ना। लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो आज का दिन हमें ये याद दिलाने के लिए है कि जिन बुजुर्गों ने हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाया, आज कहीं हम उनका हाथ छोड़ तो नहीं रहे। जब हम दुर्व्यवहार या अब्यूज शब्द चुनते हैं तो हमें लगता है कि किसी को मारना पीटना, लेकिन बुजुर्गों के मामले में दुर्व्यवहार सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये कई तरह से होता है। पहला दुर्व्यवहार है अनदेखी। वक्त पर उन्हें दवा ना देना, उनके कमरे में ना जाना या उनकी बात को अरे छोड़ो आपको क्या पता कहकर टाल देना। दूसरा है मानसिक चोट, उन्हें ये एहसास दिलाना कि अब वो परिवार पर एक बोझ है। तीसरा है आर्थिक शोषण, उनकी पेंशन या जायदाद पर हक जमाना लेकिन उनकी जरूरतों के लिए उन्हें तरसाना। एक सर्वे कहता है कि हर दूसरा बुजुर्ग अपने ही घर में किसी ना किसी तरह की उपेक्षा या दुर्व्यवहार का सामना करता है। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? वो किसी से शिकायत नहीं करते। क्यों? क्योंकि समाज के डर से और अपने ही बच्चों के प्रति ममता के कारण वो चुप रह जाते हैं। सोचिए, जिस माँ ने अपनी रातों की नींद खराब की ताकि हम चैन से सो सकें, जिस पिता ने अपनी ख्वाहिशें मार दी ताकि हमारे सपने पूरे हो सकें, आज उम्र के उस पड़ाव पर जहां उन्हें सबसे ज्यादा हमारे साथ की जरूरत है, हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। मुझे बस इतनी सी गुजारिश है आपसे कि दिन के 15 मिनट ही सही अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा। उनकी पुरानी कहानियों को चाहे आपने वो 100 बार सुनी हो, 101वीं बार भी उसी मुस्कान के साथ सुनी है। घर में कोई भी फैसला हो उनसे सलाह जरूर लें। भले ही फैसला आपका हो, लेकिन उनका मशवरा उन्हें ये एहसास कराता है कि वो आज भी घर का अहम हिस्सा हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई अकेले बुजुर्ग रहते हैं तो कभी कभी उनका हाल चाल ले लिया करें। आपका एक नमस्ते अंकल, सब ठीक है ना, किसी की जिंदगी की उदासी दूर कर सकता है और उनके चेहरे पे एक संतोष भरी मुस्कान ला सकता है। दोस्तों, याद रखिए, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये जीवन का एक खूबसूरत पड़ाव है। और हाँ, कल हम भी इसी रास्ते पर होंगे। जो सम्मान हम आज अपने बड़ों को देंगे, वही लौट कर कल हमारे पास भी आएगा। चर्चा की आखिरी लाइनों में बस इतना कहना चाहूंगी कि इमारत ढह गई लेकिन पुरानी छत ने रोका है। बुजुर्गों को मत कोसो, इन्होंने धूप को झेला है।

अभी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवावाणी।

अपने घर के बुजुर्गों को गले लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उन्हें यकीन दिलाइए कि वो अकेले नहीं हैं। इसी के साथ दोस्तों चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। आइए सुनते हैं अब एक प्यारा सा गीत जो है फिल्म एयरलिफ्ट से, गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और लिखा है कुमार ने।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट करियर गाइडेंस का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता। विषय है कृषि में एआई और युवाओं का भविष्य। वार्ताकार है निहारिका सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। समय के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पारंपरिक खेती, जो कभी हल, बैल और ट्रैक्टर तक सीमित थी, अब आधुनिक तकनीकों के साथ एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आज कृषि स्मार्ट कृषि और डिजिटल कृषि की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां निर्णय अनुभव के साथ साथ डेटा और तकनीक के आधार पर लिए जा रहे हैं। अब खेती केवल मेहनत का कार्य नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और तकनीक का समन्वय बन चुकी है। कंप्यूटर, सेंसर, ड्रोन, मोबाइल एप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग से खेती सटीक, लाभकारी और टिकाऊ बन रही है। एआई खेती का डिजिटल सलाहकार है, जो किसानों को वैज्ञानिक और सही निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे लागत कम और उत्पादन अधिक होता है। यह परिवर्तन न केवल उत्पादन बढ़ाने में सहायक है, बल्कि युवाओं के लिए कृषि को एक आधुनिक, सम्मानजनक और आकर्षक करियर विकल्प के रूप में भी स्थापित कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसमें मशीनें या कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। सरल भाषा में कहें तो एआई ऐसी प्रणाली है जो डेटा का विश्लेषण करके सही निर्णय लेने में मदद करती है, जैसे मौसम का अनुमान लगाना, फसल में रोग पहचानना, सिंचाई सही समय बताना, उत्पादन का पूर्ण अनुमान करना। ये सभी कार्य एआई की मदद से संभव हो रहे हैं। आज कृषि नई चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, मिट्टी की उर्वरता में कमी, श्रम की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत, इन समस्याओं का समाधान पारंपरिक तरीकों से कठिन होता जा रहा है। यहाँ एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह डेटा आधारित खेती को बढ़ावा देता है। सेंसर, ड्रोन और सैटेलाइट से खेतों का डेटा एकत्र किया जाता है। एआई उस डेटा का विश्लेषण करता है, फिर किसान को सुझाव देता है, जैसे कब बुआई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है, कौन सा उर्वरक देना है, रोग कब फैल सकता है। इससे जोखिम कम होता है और उत्पादन बढ़ता है। आज एआई की मदद से स्मार्ट फार्मिंग तेजी से विकसित हो रही है। फसल निगरानी, ड्रोन और कैमरों से खेत की तस्वीरें ली जाती हैं। एआई इन तस्वीरों का विश्लेषण करके बताता है पौधे स्वस्थ हैं या नहीं, कहां पोषक तत्व की कमी है, कौन सा क्षेत्र प्रभावित है। इससे किसान पूरे खेत में दवा डालने के बजाय केवल जरूरत वाले स्थान पर उपचार कर सकता है। रोग एवं कीट पहचान, एआई मोबाइल ऐप से पत्तियों की फोटो लेकर रोग पहचान सकता है। किसान केवल फोटो खींचता है और तुरंत जानकारी मिल जाती है। रोग का नाम, उपचार का तरीका, सही दवा, इससे समय और लागत दोनों बचते हैं। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, एआई आधारित सेंसर मिट्टी की नमी मापते हैं और बताते हैं खेत को कब पानी चाहिए। इससे पानी की बचत होती है, फसल की वृद्धि बेहतर होती है, ऊर्जा खर्च कम होता है। मौसम पूर्व अनुमान, एआई स्थानीय मौसम डेटा का विश्लेषण कर सटीक भविष्यवाणी करता है। इससे किसान वर्षा से पहले कटाई कर सकता है, पाला या गर्मी से बचाव कर सकता है। आज के आधुनिक कृषि युग में ड्रोन किसानों का नया और स्मार्ट साथी बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े ड्रोन खेती के कार्यों को तेज, सटीक और कम लागत वाला बना रहे हैं। ड्रोन तकनीक की सहायता से बीज छिड़काव, उर्वरक स्प्रे, कीटनाशक छिड़काव तथा फसल सर्वेक्षण जैसे कार्य कम समय में बड़े क्षेत्र पर आसानी से किए जा सकते हैं। ये ड्रोन खेतों की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और डेटा एकत्र करते हैं, जिनका विश्लेषण एआई द्वारा किया जाता है और फसल की स्थिति, रोग या पोषक तत्वों की कमी का सही समय रहते पता चल जाता है। इससे किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, उत्पादन बढ़ता है और संसाधनों की बचत होती है। विशेष रूप से युवाओं के लिए यह क्षेत्र नए रोजगार अवसर प्रदान कर रहा है, जैसे ड्रोन पायलट, एग्रीटेक सेवा प्रदाता, डेटा विश्लेषक तथा स्मार्ट फार्मिंग सलाहकार, जिससे कृषि अब तकनीक आधारित और भविष्य उन्मुख व्यवसाय बनती जा रही है। आज ड्रोन कृषि का नया साथी बन चुका है। ड्रोन की मदद से बीज छिड़काव, उर्वरक स्प्रे, कीटनाशक छिड़काव, फसल सर्वेक्षण, बहुत तेजी और सटीकता के साथ किए जा सकते।

0: सकते हैं। युवाओं के लिए यह रोजगार क्षेत्र बन रहा है, जैसे कि ड्रोन पायलट और एग्रीटेक सेवा प्रदाता। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का अर्थ है सही मात्रा में सही संसाधन सही समय पर उपलब्ध कराना, ताकि कृषि उत्पादन अधिकतम हो और संसाधनों की बर्बादी कम से कम हो। आधुनिक कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस अवधारणा को और अधिक प्रभावी बना रहा है। AI आधारित तकनीकें खेत की मिट्टी, मौसम, नमी, फसल की वृद्धि तथा पोषक तत्वों की स्थिति का लगातार विश्लेषण करती हैं और किसानों को सटीक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि फसलों को आवश्यकता अनुसार ही पानी, उर्वरक और कीटनाशक दिए जाएं, जिससे लागत घटती है, उत्पादन बढ़ता है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। AI सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट डेटा और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किसानों को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है, जिससे खेती वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभकारी बनती जा रही है। सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रही है। डिजिटल इंडिया मिशन, कृषि में ड्रोन को बढ़ावा, किसानों को प्रशिक्षण और सब्सिडी। लेकिन केवल सरकार ही नहीं, समाज और युवा भी इस बदलाव के भागीदार बन सकते हैं। आने वाला समय स्मार्ट फार्मिंग का होगा, जहां खेत खुद बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, जहां मशीनें और इंसान मिलकर खेत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसा खेत जहां ड्रोन फसल की निगरानी कर रहे हों, सेंसर मिट्टी की नमी बता रहे हों, मोबाइल एप्स सलाह दे रहे हों और किसान सिर्फ एक क्लिक से निर्णय ले रहा हो। यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बनता हुआ भविष्य है। आज आवश्यकता इस बात की है हमारे युवा कृषि को केवल परंपरा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकें खेती को आसान, लाभकारी और भविष्य उन्मुख बना रही हैं। यदि युवा नई सोच, नवाचार और तकनीक को अपनाएं, तो कृषि केवल रोजगार का साधन ही नहीं बल्कि उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकती है। अंततः जब तकनीक और युवा ऊर्जा एक साथ मिलती है, तब बदलाव निश्चित होता है। AI के साथ जुड़कर भारत का युवा न केवल अपनी किस्मत बदल सकता है, बल्कि देश की कृषि को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह स्मार्ट कृषि, समृद्ध किसान और आत्मनिर्भर भारत की सच्ची दिशा है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था कृषि में AI और युवाओं का भविष्य। वार्ताकार थी निहारिका सिंह। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट रोजगार समाचार का, जिसमें हम जानेंगे कुछ वैकेंसीज के बारे में। तो हमारे युवा साथियों, तैयार हो जाइए अपने सुनहरे भविष्य की सीढ़ियों तक चलने के लिए। दोस्तों, पहली भर्ती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC ने विज्ञापन संख्या 14 परीक्षा 2026 के तहत ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जुलाई से 3 अगस्त 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारियों जैसे कि उम्र सीमा, पदों की संख्या और पे स्केल के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है UP SSSC.gov.in। साथियों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 जून से 22 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्र की सीमा, चयन प्रक्रिया और सैलरी की पूरी डिटेल के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो है centralbank.bank.in पर।

साथियों, राजस्थान से आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी एपीओ भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in पर। दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने यूपीएससी के द्वारा चिकित्सा अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी यानी आयुर्वेद डॉक्टर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आपके पास आयुर्वेद की डिग्री है तो यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें और तुरंत अप्लाई करें। इसकी अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है upsc.gov.in। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने उप मुख्य केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर समेत कई बड़े पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में डिग्री है तो देश के इस टॉप कंपनी में काम करने का ये बहुत अच्छा मौका है। इससे शुरुआती बेसिक सैलरी ही काफी अच्छी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 28 जून 2026। तो देर न करें, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है oil-india.com। साथियों, अगली भर्ती है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने रक्षा मंत्रालय और सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर और साइंटिफिक ऑफिसर जैसे कई बड़े पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 2 जुलाई 2026। योग्यता के अनुसार उम्र सीमा 30 से 50 वर्ष तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं upsc.gov.in। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हैं तो कृषि एवं किसान मंत्रालय ने कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी यानी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और क्षेत्रीय निदेशक यानी रीजनल डायरेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 2 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए बिल्कुल आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं agriwelfare.gov.in पर। साथियों, अगर आपका सपना देश की सुरक्षा और नई टेक्नोलॉजी पर काम करने का है तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO पुणे ने आपके लिए एक शानदार मौका लाया है। DRDO की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जूनियर रिसर्च फेलो यानी GRF के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास के साथ BE, BTEC या MTEC किया हो और आपका नेट या गेट क्लियर है तो आपके लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 12 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है drdo.gov.in। दोस्तों, डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसमें बाल रोग, रेडियो डायग्नोसिस और कान, नाक, गला जैसे कई विभागों में वैकेंसी है। सिलेक्ट होने पर अच्छी सैलरी और शानदार भविष्य भी है। तो देर बिल्कुल ना करें। ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 3 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है mohfw.gov.in पर। इसी के साथ दोस्तों, ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो है फिल्म मटर से, गाया है आमिर जमाल ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, लिखा है सईद कादरी ने।

0: दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले दिन के कार्यक्रम की। कल चर्चा का विषय होगा परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारतीय इतिहास से जानेंगे पूर्वी गंग राजवंश के बारे में और साथ ही होगा आपका पसंदीदा चक्रव्यूह और मनोरंजन के लिए गीत भी शामिल होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का कार्यक्रम अब यहीं पर सम्पन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह को दे इजाजत। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम का आरंभ रीना टंडन के स्वर में इस शिव भजन के साथ।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: लीला बनर्जी के स्वर में सुनिए ये पूर्वी।

0: लाखों पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा के स्वर में ये कजरी।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: रामचंद्र सिंह और साथियों को सुनिए इस लोकगीत में।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके ठीक बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि

0: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Addressing a joint press conference after the talks, Mr. Modi said India and Slovakia have decided to elevate ties to the status of comprehensive partnership.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है यह हमारे साझा विश्वास साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा

क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से।

0: अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़ैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: अरमान मलिक और पलक मुछाल को सुनिए सनम रे फिल्म के इस गाने में। गीत मनोज यादव का है और संगीत अमाल मलिक का।

इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम श्याम सुहानी से अब दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तः। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः संधेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च

0: सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जेवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडन देशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकांतरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया सम्बन्धान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् AI इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थ व्यवस्थां प्रौद्योगिक विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93 स्लोवाकिया देशस्य स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिक संकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति, अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने वित्तमंत्री अवोचत् यत् खरीफ इति ग्रीष्मर्तौ धान्येभ्यः पर्याप्त मात्रायां उर्वरकोपलब्धता वर्तते। तयोक्तं यत् ऐषमः प्राविट् नैयून्यं स्यादिति संभाव्यते, तथापि अस्माकं पार्श्वे पर्याप्त भण्डारः विद्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।

0: मंत्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां द्वादशः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य भव्यायोजनाय औपचारिक कार्यक्रमाणां शुभारम्भो विहितः। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः राजधान्यां नवदिल्ल्यां अवोचत् यत् मुख्य कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे कोलकातायां भविष्यति। अमुना उक्तं यत् अत्रावसरे 45 निमेषात्मकं योगसत्रम् आयोजयिष्यते। मुख्य कार्यक्रमेण सह हुगली नद्यां 500 नौकासु योगसत्रस्य आयोजनस्य योजना वर्तते।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: आयुष मंत्री अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य समारोहात् पूर्वं गतदिने विशेष योग कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणे योगसत्रे 4,00,000 जनैः प्रतिभागं विधाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्वकीर्तिमानं संरचितम्। अवधेयं यत् अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः वर्तते। फ्रांस देशस्य एवियन नगर इति नगरम् अद्य रात्रौ आरभमाणस्य 50-50 G7 सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं सज्जम् अस्ति। अमेरिका ईरान देशयोः 70-100 दिवसीय युद्धस्य समाप्तये सन्धेः निर्धारणेन एषा सभा महत्वपूर्णेन सकारात्मकेन विकासेन सह अवलोक्यते। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः एमैनुअल मैक्रों G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति। भारतं, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिश्र देशाः च सहभागित्वेन शिखर सम्मेलने आमन्त्रिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं श्वः एवियन नगरं गमिष्यति। उत्तर प्रदेशस्य जेवर क्षेत्रे नोएडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिक रूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां संचालनम् अभवत्। एतत् हि देशस्य नागर विमान क्षेत्रे महत्वपूर्णं सोपानं निर्दिशति। उद्घाटन समारोहं संबोधयन् केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू अवदत् यत् विमानस्थानकस्य प्रथम चरणे प्रतिवर्षं 1.2 कोटि यात्रिणां यात्रानुमानं वर्तते। अनन्तरं प्रतिवर्षं 7 कोट्यधिक यात्रिणां यात्रानुमानं भविष्यति। सः अवदत् यत् एतत् विमानस्थानकं राष्ट्रिय सेवायाः, अन्ताराष्ट्रिय विमानसेवायाः च परिचालनस्य केन्द्ररूपेण कार्यं करिष्यति। विमानस्थानकस्य कृते स्वभूमिं दत्तवतां 70-100 कृषकाणां समूह जेवरक्षेत्रस्य विधायकस्य धीरेन्द्र सिंहस्य नेतृत्वे अन्यैः च साकं जेवर विमानस्थानकात् लखनऊ नगरं प्रति प्रथम वाणिज्यिक विमाने यात्रां कृतवन्तः। ऋतुविज्ञान विभागेन देशस्य पूर्वोत्तर भागे उपहिमालयीय क्षेत्रे पश्चिम बंगाले च श्वः यावत् प्रबल वृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। ऋतु विज्ञान विभागेन राजस्थाने, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, ओडिशायां, मध्यप्रदेशे च झंझावातस्य नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च उक्तं यत् दक्षिण पश्चिम प्रावेट प्रभावाय स्थितिः अनुकूला वर्तते। एषमः फीफा विश्व चषक स्पर्धायां स्वीडन देशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एफ क्रीडायां ट्यूनेशिया देशं 5 अंकान्तरालेन पराजयत्। स्वीडन देशः द्वितीयार्धे प्रबलं प्रदर्शनं कृत्वा विश्वसनीयं विजयं प्राप्नोत्। अनेन विजयेन स्वीडन देशः स्वस्य विश्वकपस्य अभियानस्य प्रबलं आरम्भम् अकरोत् इति वार्ताः।
2: FM बैंड 1.9 MHz पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर्गांव के।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: रेखा गौड़ के स्वर में सुनिए ये लोकगीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज स्वर गांव की। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: यही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: पंचो जय हिंद। पंच भैया, देखो आज है 15 जून। अब अपने सब हर 15 जून का विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाई थे। अपने सबन के जोन परिवार के बूढ़ बुजुर्ग है ना भैया, उनके अनुभव, उनके संस्कार, उनके जीवन के मूल एक अमूल्य धरोहर के रूप में बांटे भैया। भैया बुजुर्गन के जोन अनुभव और मार्गदर्शन है ना, वो एक ऐसा खजाना होता है जेकर तुलना हम और कौनों मेर के भौतिक धरोहर जोन होते हैं वह से बिल्कुल नहीं कह सकते थे। बात अगर अपने देश के की जाए भैया ना, तो बहुत से ऐसा उदाहरण मिलत हैं जवन की पूरी उम्र अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में बिताए दीन ही और यही इतने काम के कि वे परम गति का प्राप्त हो गए भैया। तो माता पिता के जोन यहमियर के भक्त हैं, जैसे अपने क्षेत्र के आसपास के रहे श्रवण कुमार भैया, श्रवण के विशेष रूप में देखा जाए तो अपने सब उनका खूब अच्छी तरह से जानित समझित है। जोन हर मनई के चाहे कि अपने माता पिता के सेवा में लगा रहे हुए हर समय लगा रहत रहे, ऐसा अपनों सबका चाहिए भैया। और उनका कांवड़ पर बैठाए के वे तीर्थ यात्रा जोन बाहर करवावत रहे जगह जगह। श्रवण के अंतिम इच्छा भी रही कि उनके जोन प्यासे पानी के प्यास माँ माता पिता तड़पत हैं उनका पानी पिलाए दिन जाए। यही तरह से भैया अपने देश में महाराष्ट्र के माँ पुंडरीक भक्त रहे, जो अपने दरवाजे पे आए अपने आराध्य विट्ठल महाराज का यही लिए सारी रात प्रतीक्षा करवाए रहे। कारणों के कार रहा भैया ना कि वे अपने पिताजी के पैर दबावत रहे। पंचो आज भी श्रवण कुमार पुंडरीक जैसन आदर्श संतान के बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण अपने के तौर पर हमें दिखावत है और बतावत है। पंचो आज भी यही तरह के परंपरा का अपने सबके बीच में जरूरत है और यही से हम सबन के कल्याण भी निहित है। पंचो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के शुरुआत 15 जून 2006 का इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज्ड और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कीन गए रही। पंचो 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव के तहत 15 जून का आधिकारिक रूप से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस घोषित कीन गवा। लोग अपने वृद्ध माता पिता के सेवा के लिए सजग रहें यही बात का ध्यान में रख के ये दिवस मनाया जाता है, सबका जागरूक किया जाता है यही दिन। जहां ले अपने देश के बाद भैया तो अपने देश में भी वृद्ध माता पिता के अधिकार व सुरक्षा के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के आज भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 लागू किन गवा बाय। वरिष्ठ नागरिकन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन जैसे सुविधा भी संचालित किन जाते हैं। पंचो देखो आज लोग अपने बुजुर्गन से सही व्यवहार रखे के पर थोड़े थोड़े देखा जात बाय कि थोड़के वह लापरवाह होते हैं। लोग सोचते हैं कि उनका हम भोजन पानी दवा और तमाम सुख सुविधा दे के खुशहाल रख ले वे। बोल भैया ऐसा होत ना है, जब तक कि उनसे अपन मानसिक जुड़ाव न हुए तब तक अपने परिवार के बूढ़ बुजुर्ग का वो शांति और सुख नहीं मिल पावत है। बुजुर्ग अक्सर देखे थे कि यह मेयर के स्थित मनत है तो अकेलेपन के शिकार बन जाते हैं। बुजुर्ग हम सबन के परिवार और समाज के एक ऐसन मिसाल होते हैं जो हमें हर तरह से सुरक्षित करते हैं और रास्ता भी दिखावते हैं। हम सब उनकी सूरज

0: सुरक्षा सम्मान और खुशहाली पर ध्यान रखी तो उनके जो रोवा रोवा है ना उससे जो आशीर्वाद है वो अपने सबका मिलत है और बड़े काम के हुआ थे बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद भैया बड़े से बड़ा काम बनाए दिया थे संवार दिया था। साथ ही एक संवेदनशील सभ्य और संस्कारी परिवार व समाज के निर्माण हुए से बुजुर्ग खाली हमारे अतीत के हिस्सा ही नहीं भैया बल्कि वर्तमान के वे नींव हैं भविष्य के पथ प्रदर्शक भी बना रही हैं। बुजुर्ग परिवार का हम सब खूब अच्छे से ख्याल रखी अपने परिवार में उनके सेवा करी उनका अपने पास रखी अपने घर परिवार के जोन गेत गिदारा हैं उनसे अच्छे से खूब मिले जुले दी ताकि उनके भी समय जोन बाए वो बीत जाए और खुशी मन से रहें और खाए पिए स्वस्थ रहें। तो इस तरह से भैया यह दिवस का मनावा के एक उद्देश्य है कि हम अपने बुजुर्ग के जो बाटे उनके खूब ख्याल रखी उनके खूब सेवा सत्कार करी और उनके हिसाब से अपने परिवार का चलाई भैया और उनसे जो उन सीख मिलती है वो अपने जीवन में उतारा जाए। बोल भैया बात रही तो यह कर और अब बात करिए अपनी खेती किसानी के तो अपने सभी देखो मौसम के हिसाब से तमाम मेयर के जो फसल है अपने खेतन में बोवा जाता है लगावा जाता है ऐसे नए जो फसल होती है वहाँ कबो कबो देखे मिलता है कि कीट जोन हुआ थी लग जाते हैं उनसे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो खरीफ सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका प्रबंधन ये पे जानकारी देते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दलाल भैया और उनसे बातचीत आलोक कुमार गुप्ता के हैं। तो चलो सुनी का बतावत हैं का समझावत हैं डॉक्टर भैया।
1: पंचों जैसे अभी आप सुनिए अपने सबके बीच में डॉक्टर प्रदीप कुमार दलाल भैया आवा हैं। आप हैं सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान सब्जी विज्ञान विभाग उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से। सबसे पहले तो आपके स्वागत करी थे अपने पंचायती में साथे साथ आपसे जाना चाहिए अपने पंचन के बदे कि यह सहिती जौन अपने पंचे भाई सब्जी के बुआई करत हैं उमन खरीफ सब्जी में लागे वाले प्रमुख कीट और उनके प्रबंधन के बदे अपने सबका कौने मेर के व्यवस्था बनावक है। तो सबसे पहले तो यही बतावें कि खरीफ माँ कौन मेर के प्रमुख कीट लागत हैं।
2: जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जो सब्जियां हैं इस सीजन में लगने वाली वो प्रमुख सब्जियां हैं लता वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू करेला लौकी इसके अलावा जो भिंडी लगती है बैंगन लगता है सेम लगता है। तो इन सभी सब्जियों के अंदर जैसे अगर मैं लता वर्गीय सब्जियों की बात करूं तो दो प्रमुख कीट हैं जैसे एक लाल कद्दू भृंग होता है तो ये लाल कद्दू भृंग जो होता है इसका जो शिशु अवस्था होती है वो जड़ों पर हमला करती है और जो इसकी वयस्क अवस्था होती है वो सीधा पत्तों पर हमला करती है पत्तों में काफी बड़े बड़े छेद कर देती है और जैसे ही अनुकरण जैसे होता है जर्मिनेशन होता है फसल का वैसे ही इस कीट का हमला देखने को मिलता है और काफी ज्यादा मात्रा में ये नुकसानदायक कीट होता है फलों को ये मार देता है। और अगर हम बात करें फल मक्खी के बारे में तो फल जैसे ही कद्दू वर्गीय लता वर्गीय सब्जियों के फल आने शुरू हो जाते हैं तो इस कीट की मादा जो है फलों के अंदर अंडे दे देती है जिससे जो है अंडों में से सुंडियां निकलती हैं और वो फलों को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देते हैं और सड़ा देते हैं। तो ये दो कीट जो है प्रमुख रूप से बेल वाली या लता वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें नुकसान करते हैं। अगर हम बात करें भिंडी के बारे में तो भिंडी के अंदर प्रमुख रूप से चार कीट लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कीट जो उसमें लगता है वो तेला होता है। तेला जो है पत्तों के पिछली सतह में जो है रहकर रस चूसता है जिसकी वजह से पत्ते किनारों से पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं उसके बाद उसमें जो आकार है कप के आकार का वो दिखने लग जाता है ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे पौधे की जो हाइट है वो छोटी रह जाती है उनमें फलों का बनना रुक जाता है और किसान को लगभग जो है 25-30% तक का नुकसान देखने को मिलता है। और इसी में ही जो है एक सफेद मक्खी कीट आता है वो पिछिरा रोग का जो है प्रसार करता है जिससे काफी उत्पादन में नुकसान देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इसमें एक फल छेदक कीट भी लगता है उसके परिणाम स्वरूप फल जो है मुड़े हुए दिखाई देते हैं जो मार्केट में जो है इसकी कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाती किसानों को और किसानों को उत्पादन में भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर बैंगन की फसल की मैं बात करूं तो बैंगन के अंदर दो महत्वपूर्ण कीट लगते हैं एक तना एवं फल छेदक। तो ये कीट जो है इसके गुलाबी रंग की सुंडी होती है वो सबसे पहले तने पे हमला करती है तना जो है मुरझाकर नीचे गिर जाता है और फिर फलों के अंदर जो है ये छेद करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है जिससे किसानों को लगभग 30-40% तक का नुकसान का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल देखें नुकसान की सामना अपने पंचे कम से कम करें यह के मंशा अपने सरकार के भी है और वह के लिए तमाम मेयर के प्रयास अपने सरकार के रहत भी है कि कैसे अपने भाई जो किसान पंच हैं उनका

0: तमाम दवाई में उनके भाई सुविधा देते हैं, तमाम तरह के अनुदान देते हैं। सबसे पहला तो जो आप बताओ तो लाल कद्दू भृंग, तो यमन एक नियंत्रण पे कोने मेर से अपने सबका व्यवस्था बनावे
1: है। देखिए, जितने भी प्रकार के कीट जो सब्जियों में लगते हैं, हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें हमें एकीकृत कीट प्रबंधन का उपयोग करना है। एकीकृत कीट प्रबंधन में ना सिर्फ हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा हम जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, सस्य क्रियाएं होती हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर लाल कद्दू भृंग की अगर हम बात करें, तो इसमें मिट्टी के अंदर हम जो है खुरपी लेकर थोड़ी बहुत जो है खुदाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इस कीट की अवस्थाएं होती हैं वो मर जाती हैं और ये कीट कम से कम नुकसान करते हैं। इसके अलावा इसमें हम चूल्हे की बुझी हुई राख जो होती है उसका भी छिड़काव कर देते हैं।

0: इसमें हम चूल्हे की बुझी हुई राख जो होती है उसका भी छिड़काव कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये कम जो है हमला कर पाता है। इसके बावजूद अगर ये कीट ज़्यादा नुकसान करता है तब हम कीटनाशकों को रेकमेंड करते हैं, और उसमें भी कीटनाशक जैसे कि साइपरमेथ्रिन की लगभग 25 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। और आज के समय में जो है नए कीटनाशक आ रहे हैं, तो इसमें साइंट्रा निलीप्रोल की 1.2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके इस कीट से बचा जा सकता है।
1: माने कि अपने पंचायतना से बचाव कर सकते हैं, वह से बच सकते हैं। एक साथ साथ फल मक्खी की बात हो रही तो वह के भी भाई आप बतायो, लेकिन वहमन नियंत्रण के बदे अपने समय बचाव कैसे कीन जाए?
0: जी, बचाव के लिए इसमें महत्वपूर्ण तरीका ये है कि जैसे कीट के जीवन चक्र की बात करें तो इसकी एक प्यूपा की अवस्था मिट्टी में रहती है, तो इसमें भी जैसे पिछले कीट की भांति इसमें सेम यही हमें करना है कि मिट्टी में खुदाई करनी है जिसमें इसकी जो प्यूपा अवस्था है वो नष्ट हो जाए, और साथ ही साथ जो हमारे ग्रसित प्रकोपित फल होते हैं उनको इकट्ठा करके हमें जो है जमीन में दबा देना चाहिए। तो ये एक तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस कीट के हमले को। दूसरा हमें क्या करना है कि इसमें क्यूलियो ट्रैप हम लगाते हैं। क्यूलियो ट्रैप आपको विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ जो कंपनियां होती हैं वो भी उसको बनाती हैं, तो प्रति एकड़ अगर हम 16 क्यूलियो ट्रैप लगा दें तो इसमें जो फल मक्खी का जो नर होता है वो हम पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। और साथ में हम स्पाइनोसाइड को जो है गुड़ में मिलाकर उसका भी छिड़काव करते हैं, तो जिसकी वजह से हम इस कीट से नियंत्रण पा सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ही साथ ही साथ देखे अपन जो भिंडी के बात होत रही, उमन फल भेदक के बात होत रही, तो यह के नियंत्रण के बदे अपने समय का कीन जाए?
0: भिंडी के फल भेदक के लिए हमें जो है सबसे पहले जितने भी ग्रसित फल हैं उन ग्रसित फलों को जो देखते हैं तो वो टेढ़े से दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े फलों को इकट्ठा करके हमें नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा हमें जो कीटनाशक का स्प्रे करना है तो कीटनाशक में इमामेक्टिन बेंजोएट एक आता है कीटनाशक, जिसकी 60 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, और छिड़काव करने के लगभग 10 से 12 दिन बाद ही हमें फलों की तुड़ाई करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए।
1: अच्छा, देखें अभी भिंडी में एक बात और अपने सबके पंचे हमेशा भाई देखा करते हैं कि लाल माइट एमन अपने सबके नियंत्रण के बदे का कुछ करे है?
0: अब ये लाल माइट जो है जाला बनाने वाली एक एक प्रकार का जंतु होता है जो पत्ते के पीछे रहकर रस चूसता है और जिससे सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे देखने को मिलते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे ज़रूरी एक प्रेम्प्ट एक कीटनाशक आता है जिसकी 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से जब हम छिड़काव करते हैं तो इस कीट से इस जंतु से हम बचा सकते हैं अपनी फसल को।
1: बहुत अच्छी बात है। अभी अपने समय देखो सेम के बात की यात्रा, सेम अभी तमाम मेर के भाई नुकसान होते है जौन कीट पतंगा लागत है, एमन जौन चेपा और सफेद मक्खी के बात होत रही, यह के नियंत्रण अपने सबके पंचे कैसे करें?
0: अब चेपा और सफ़ेद मक्खी ये रस चूसक कीट होते हैं, पत्ते से नीचे की सतह से ये रस चूसते हैं और नुकसान करते हैं जिससे पौधा कमजोर हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं कर पाता। तो इससे बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम 15 से 20 एक येलो स्टिकी ट्रैप आता है वो हम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में लगा देते हैं, जिसके ऊपर ये आकर्षित होते हैं दोनों प्रकार के कीट और आकर चिपक कर मर जाते हैं। दूसरा हम नीम की खली का जो रस होता है 5 मिलीलीटर उसकी मात्रा लेकर प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं, और अगर प्रकोप जब भी काबू में नहीं आता और प्रकोप बढ़ जाता है तो लास्ट में हम जो है इमीडेक्लोप्रिड की 5 मिलीलीटर मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, यह तरह के हम समझते हैं। अगर अपने पंचे जो आप बतावत हो आकाशवाणी योद्धा के बारे से इतना बढ़िया जानकारी पंचे सुनत है, गुने की कोशिश करें, समय पर ओके इस्तेमाल करिए, निश्चित है लाभ हुए। लेकिन यही के साथ साथ देखें फल छेदक के समस्या से अपने सभी हमेशा जो उन पंचे है परेशान रहते हैं, वो के नियंत्रण अपने पंचे कैसे करें?
0: तो फल छेदक में जैसे बताया जाता है कि इसमें सबसे पहले पहचान करने की फल जो है मुड़े हुए दिखाई देते हैं भिंडी की फसल में, और इसमें जो है मुड़े हुए फलों को सबसे पहले इकट्ठा करके हमें नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद जो है हमें कीटनाशक के रूप में साइपरमेथ्रिन की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना चाहिए।
1: बैंगन एक अच्छी फसल है, अपने पंचे तमाम यह तरह के फसल से मुनाफा लेते हैं, साथ ही साथ नीक पैदावार करते हैं, लेकिन बैंगन में तना और फल छेदक की समस्या अक्सर देखी जाती है, नियंत्रण के बदले अपने पंचे का कुछ करें?
0: इस कीट के नियंत्रण के लिए जो है सबसे पहले हमें इसका एक फेरोमोन ट्रैप आता है, ल्यूसीलियो ट्रैप जिसको कहते हैं, तो 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उसको अपने खेत में लगाना चाहिए। इसमें भी क्या होता है कि इस ट्रैप में जितने भी नर जो ये कीट होता है वो आकर

0: में आ जाते हैं, जिससे आगे इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, हमें जितने भी प्रकोपित टहनी और फल होते हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और लास्ट में हमें स्पाइनोसाइड की लगभग 75 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने के लगभग 10 से 12 दिन बाद ही हमें फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। और इसके अलावा जिसमें इसी फसल में जो है हड्डा भृंग भी लगता है, जो सीधा सीधा पत्तों को नुकसान पहुंचाता है, तो इस कीट से भी नियंत्रण पाने के लिए हमें साइपरमेथ्रिन की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: कितना बढ़िया जानकारी हम समझे थे पंचन का आपके माध्यम से मिलत है। लेकिन खरीफ के सब्जी में लगे वाले प्रमुख कीट और उनके प्रबंधन के बारे में तो बात कही भाई, लेकिन का कुछ यह मेरे के सजगवाही की बात करिए आप, जैसे अपने पंचे थोड़ा सा सचेत रहें, उनके फसल पर कोनो विपरीत प्रभाव न पड़े, साथे साथे उनकी जो फसल है वो बढ़िया सा होए।
0: देखिए, आप हमेशा जो है मौसम की निगरानी करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब भी शुष्क मौसम होता है, जब भी नमी वातावरण में कम होती है, उस समय पर रस चूसने वाले कीट जो हैं, जैसे कि थ्रिप्स, चुरड़ा जिसे कहा जाता है, तो मिर्च की फसल में बहुत लगता है। या फिर अगर मैं बात करूं माइट, जो अभी हमने बात करी उसके बारे में, भिंडी में जो लगता है, तो कम शुष्क वाले शुष्क मौसम में ये ज़्यादा लगता है। तो इसकी निगरानी करने के लिए सबसे पहले किसान को ज़रूरी है कि सुबह सुबह अपने खेत में जाए और आड़ा तिरछा जो है लगभग घूम कर 10 से 20 जो है पौधों को सिलेक्ट करके पत्तों के नीचे देखे कि क्या उसमें उसको कीट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें भी क्या होता है कि हर फसल और हर कीट के हिसाब से एक आर्थिक कगार दर होती है। अगर कीट जो है आर्थिक कगार दर या उसकी पॉपुलेशन तक पहुंच जाती है, तब ही हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा नहीं करना पड़ता। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करना भी नुकसानदायक होता है, जिससे प्रदूषण होता है, जिससे हमारे फलों में और सब्जियों के अंदर भी जो है कीटनाशक के अवशेष आ जाते हैं, और हमारी जितनी भी जनसंख्या उनको भी इसका नुकसान भोगना पड़ता
1: है। बिल्कुल, आपके बताई गई बात से तो हम समझित है नुकसान कम से कम हुए और साथ ही साथ फायदा ज्यादा से ज्यादा हुए, यमन कोनो शक सुबह नहीं ना। आप इतना बढ़िया जानकारी खरीफ सब्जी में लगे वाले प्रमुख कीट और उनके प्रबंधन के बदे जौन बतायो है, निश्चित है ओके लाभ अपने पंचे सुनिन है, गुनी है, अमल में लई है तो जरूर मिले। आपका यह पंचायती में आवे के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार दलाल भैया, आप सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान सब्जी विज्ञान विभाग उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से इतना बढ़िया जानकारी अपने पंचन के साथ साझा की है। हम आपका यह के लिए आकाशवाणी अयोध्या के बारी से दी थे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच भैया, देखो अपने सब खेती किसानी में सब्जी के खेती के ही खास करके खरीफ के मौसम में तो हिमा केरोने तो भैया लगभग करत हैं, तो उनसे बचाव खातिर देखो प्रदीप कुमार दलाल भैया खूब अच्छे से समझाए हैं कौनी फसल में कौन कीड़वा लागत है, कैसे नियंत्रण करवाए कुल आप समझ गया हो, और यही तरह से अपने फसल की अगर सुरक्षा करी है तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन मिले भैया। मूल देखो अब पंचायती का समय है कि हम मनमनसाइन भी आप सबके कराई दी, कहे से आपका इंतजार रहा था गीत गौने सुने के भी, तो अरविंद मौर्य और साथी भैया सुनाए रहा है ये गीत, चलो सुने जाए।

बिल्कुल भैया, जब अपने से भी इतना मन लगाए कि इतनी मेहनत से कई के इतना खर्चा गए कि खेती करबे तो कुल फसल पैदा तो होबे करे, और जो कुल फसल पैदा हुए तो हमारे सबके भैया किसान पंचन के तरक्की भी हुए। मूल भैया देखो, अपने सबके तरक्की में जोन बाजार भाव हुआ था, मौसम हुआ था, यहू कुल के भैया जाने रहा समझे के बहुत जरूरत हुआ था। काहे से जब ये कुल पता रहा था ना तो हमार काम और आसान हो जाते। अब कौन चीज बेचे के बाद बाजार भाव मालूम बाय तो कौन चीज कौन रेट के बाद, तो हिसाब से क्यों हमका भैया चीटिंग नहीं कर पाओ, देनी ठगी नहीं कर पावत है। तो जोन अपने जनपद अयोध्या की मंडी से बाजार भाव मिला है वो हम आप सबका बतावत चली। चावल सामान्य 3,070 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा 2,585 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2,370 रुपया प्रति क्विंटल, उड़द काली 9,230 रुपया प्रति क्विंटल, चना देसी 6,400 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 7,150 रुपया प्रति क्विंटल, अरहर दाल 10,900 रुपया प्रति क्विंटल, आलू सफेद 900 रुपया प्रति क्विंटल, प्याज लाल 1,450 रुपया प्रति क्विंटल, टमाटर 3,000 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन 7,150 रुपया प्रति क्विंटल, तरोई 1,800 रुपया प्रति क्विंटल, खीरा 2,040 रुपया प्रति

0: क्विंटल, बैंगन 2100 रुपया प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3500 रुपया प्रति क्विंटल, कद्दू 950 रुपया प्रति क्विंटल, अदरक 9700 रुपया प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 3500 रुपया प्रति क्विंटल, भिंडी 1600 रुपया प्रति क्विंटल, लौकी 1685 रुपया प्रति क्विंटल, करेला 1800 रुपया प्रति क्विंटल, केला पक्का 2800 रुपया प्रति क्विंटल, सेब 12250 रुपया प्रति क्विंटल, अनार 7300 रुपया प्रति क्विंटल, गुड़ बट्टी 5180 रुपया प्रति क्विंटल, चीनी 4130 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तरह से अपने जनपद की अयोध्या मंडी से बाजार भाव मिला रहा भैया, वो बताए रहे हैं। अब लगे हाथ मौसम संबंधी जो जानकारी हमें मिली है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। तापमान अधिकतम 37 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 52%। हवा की गति रही 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा उत्तरी पश्चिमी रही। पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छावा रह सकता है, वर्षा के कोनो संभावना भैया नहीं है। तो इस तरह से बाजार भाव मौसम रहा। और हमें कहा चाहिए भैया मौसम का देखत भाई, जिसे वहीं गर्मी खूब पड़ती है, हमें अपने खेती किसानी के जो काम है वो का समय से पूरा करे, खास करके संध्या सुबेरे के समय में तेज धूप की दशा में, लू चले की दशा में खेते मन जाएं और आराम से जुड़वारे जुड़वारे काम करें, ताकि अपन स्वास्थ्य अच्छा रहे, और स्वास्थ्य अच्छा रहे तो खेती किसानी के काम भी अच्छे से हो जाए। और सिंचाई पताई के जहाँ तक बात भैया ना, तो गर्मी के मौसम में नमी खेते में बनी रह चाहिए, खास करके सब्जी वाली फसल में। तो देखा करें जरूरत जैसे समझें सिंचाई शुरू कर दिए। तो भैया यह तरह से आज के हमारा कार्यक्रम रहा है कृषि जगत। आगे फिर कोनो दिन पंचायती में आप सबसे यही कार्यक्रम में मिलबे। तब तक खातिर हमें यानी मतोले भैया का आप दियो अनुमति। पंचो जय हिंद।
1: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगना मा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम आपकी बात सुनिएगा रात्रि 9:15 से और कार्यक्रम हेलो अयोध्या का समय होगा रात्रि 9:30। हमारे कल के कार्यक्रमों में प्रातः 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश सुनिएगा प्रातः 7:30 से। सुर संगम आप सुनेंगे प्रातः 8:15 से। प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 8:30। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। इसके अलावा डॉक्टर रमेश दत्त की वार्ता भी आप सुन सकेंगे। विषय होगा सांख्य दर्शन, कुछ जानने योग्य बातें। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत सुनिएगा प्रातः 9:00 से। प्रातः 9:30 से कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या। दिन में 11:55 से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल।

लोकरंग कार्यक्रम होगा दिन में 12:30 से। फेसबुक फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा सुनिएगा दिन में 1 से। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2 से। दिन में 2:30 से कार्यक्रम होगा नारी जगत। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और साथ ही बात होगी गर्व करें स्वयं की संस्कृति एवं सभ्यता पर। इसके अलावा परमात्मा दास महंत विद्या देवी मंदिर अयोध्या की वार्ता भी आप सुन सकेंगे। विषय होगा गौ पशु का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 3 से। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5 से। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारतीय इतिहास से के अंतर्गत आप जानेंगे पूर्वी गंग राजवंश के बारे में। इसके अलावा होगा चक्रव्यूह। लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 5:30 से। शाम सुहानी कार्यक्रम होगा शाम 6:10 से। गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम होगा शाम 6:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी का समय होगा शाम 6:45। कार्यक्रम में चर्चा होगी खरीफ उड़द मूंग की खेती विषय पर। इसके अलावा डॉक्टर अजय कुमार यादव सहायक अध्यापक मत्स्य पालन विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। विषय होगा गर्मी के मौसम में मछली पालकों हेतु समसामयिक कार्य। एक और भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे किसान कल्याण की योजनाएं और खेती बचाओ अभियान विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर भवतीन्द्र मिश्र संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या और इनसे बातचीत करेंगे राम प्रकाश पांडे। शाम 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। गीत गुंजन होगा रात्रि 8:15 से। महफिल गजल कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 से। और कार्यक्रम हेलो अयोध्या का समय होगा रात्रि 9:30। श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किट बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
3: ले आ गया नया किट बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, का अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट

0: घरेलू संचालन का हब बनेगा।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स है जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

0: इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को हवा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
2: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश एक रिपोर्ट।
3: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
4: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: FM 101.9 MHz पर हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसार।

को महेंद्र कपूर की आवाज में ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत था। एस एच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। सूरज फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफी का गाया। हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। एस एच बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने। जयमाला कार्यक्रम की यही थी श्रोताओ आखिरी पेशकश। आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म के नगमे में।

गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल थे। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी फिल्म थी तेरे घर के सामने। और आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आपको हम सुनवा रहे हैं इसी फिल्म के नगमे।

सचिन देवर्मन की तर्ज, हसन जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज। आप सुन रहे थे तेरे घर के सामने, इस फिल्म का गीत। एक ही फिल्म से एक कार्यक्रम श्रोताओ अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए तेरे घर के सामने, इस फिल्म के नगमे।

आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। तो आइए सुने झलकी नीम हकीम।

0: पड़ोस ने जाने क्या सोचती होंगी कि पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह सुन रही हूँ जो तुम चिल्ला रहे हो।
1: ठीक है लेकिन मैं मेरा दांत।
0: सुनो जी मैं जब छोटी थी तो मेरा भी एक बार दांत दर्द हुआ था। उस वक्त मेरी नानी जी ने मेरे दांत के नीचे देसी घी का गर्म रुई का फोया रखा था।
1: फोया?
0: हाँ जी, रुई को गर्म देसी घी में भिगो कर दांत के नीचे रखा। कसम से कहती हूँ मेरे दांत का दर्द एकदम ठीक हो गया था।
1: तो वही लाओ ना भगवान, मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही है।
0: अरे वही तो लाई हूँ, लो ये कटोरी में गरम घी और ये रुई का फोया, लो ये मुंह में रखो, खोलो मुंह, ये लो। क्या हुआ भगवान, ये पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। अरे क्या बात है, घी क्या ज्यादा गर्म था?
1: गरम, ओहो दांत के साथ सारा मुंह भी चल गया।
0: बाप रे भगवान,
1: क्या कुछ भी नहीं खाया, खाली दूध पीकर गुजारा कर रहा था, अब तो दूध भी कैसे पिया जाएगा।
0: तो तुमसे किसने कहा था कि जल्दी से मुंह खोल दो, घी गर्म था तो थोड़ी देर ठहर जाते।
1: तुमने नहीं कहा था कि मुंह खोलो?
0: सुनो जी, एक बार और मेरे दांत में दर्द हुआ था।
1: अच्छा फिर?
0: कसम से कहती हूँ मेरी दादी जी घर पर आई हुई थी, बस उन्होंने फिटकरी जलाकर और गर्म पानी में घोलकर मुझे जो कुल्ले कराए और बस
1: फिर
0: मेरे दांत का दर्द फौरन गायब।
1: तो क्या फिर अब मुझे भी कुल्ले करवाओगी?
0: हाँ जी, मैंने फिटकरी जलाकर रखी है और पानी गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है, अभी लाती हूँ। कौन? आती हूँ। कांता बहन आओ, बहन आओ।
2: क्या बात है शांति बहन, क्या भाई साहब की तबीयत कुछ खराब है?
0: हाँ बहन, क्या बताऊँ, इनके आज सुबह से दांत में बहुत दर्द है। कसम से कहती हूँ मेरे तो नाक में दम आ गया है।
2: क्या दांत में दर्द? बहन मेरी मानो तो लौंग का तेल लगाओ, हमारी उनके भी एक बार दांत में दर्द हुआ था।
0: हाँ।
2: मैंने लौंग का तेल लगाया, फौरन ठीक हो गया।
0: अच्छा लौंग का तेल, मगर यहाँ मिलेगा कहाँ?
2: मैं देखती हूँ, घर में शायद बचा हुआ पड़ा हो।
0: बड़ी मेहरबानी होगी बहन।
2: मेहरबानी की क्या बात है बहन, आए आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, मैं अभी लाती हूँ।
0: ठीक है। मैंने कहा जी लो ये गर्म पानी में फिटकरी घुली रखी है, लो कुल्ले कर लो।
1: पानी पानी गर्म तो नहीं है?
0: देख लो ना।
1: हाँ ठीक है, मेरा तो मुंह ना जाने कैसा कैसा हो गया।
0: अजय मुंह तो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, मैं कहती हूँ कुल्ले करो।
1: अच्छा ठीक है।
2: लो शांति बहन, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिली है, मैं रुई पर ही लगा लाई हूँ, अब ये रुई तुम मुंह में रख दो, ठीक हो जाएंगे। मैं जाती हूँ, सारा काम पड़ा है, जाके बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी साफ करने हैं।
0: सुनो जी, ए जरा ये रुई मुंह में रख लो, ये मुंह खोलो।
1: मगर ये फिटकरी का पानी,
0: ये बाद में कर लेना, तुम मुंह तो खोलो।
1: लो ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो?
0: अजी अब क्या है?
1: भगवान साहब तुम भाई साहब रखी है।
0: ओहो तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: तू बताता कैसे देवी जी, तुमने रुई से तो सारा मुंह बंद कर दिया था। खैर मैं खुद ही रख लेता हूँ, ऐसे मर गया, मर गया।
0: ओ अब क्या हो गया?
1: मेरी तो जान ही निकल गई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तेजाब।
0: ओहो मेरी मानो तो डॉक्टर के पास चलो।
1: डॉक्टर के पास?
0: इस मुंह में दांत को निकलवाना ही होगा।
1: मगर
0: अगर मगर कुछ नहीं जी, चलो डॉक्टर के पास
1: चलो। आए मैं मरा, आए आए आए मर गया रे।
0: नमस्ते डॉक्टर साहब।
3: नमस्ते। हाँ तो कौन से दांत में तकलीफ है?
0: देखिए डॉक्टर साहब, ना मैं सुई लगवाऊंगी और ना सुन करवाऊंगी, बस हम बहुत जल्दी में हैं, जल्दी से आप दांत निकाल दीजिए।
3: कमाल है, आप तो बहुत बहादुर और हिम्मत ही लगती हैं। कौन सा दांत है?
0: चलो जी आगे बढ़कर अपना दांत दिखा दो।
3: क्या आप? ये आइए आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए।
1: मगर डॉक्टर साहब दांत निकलवाने में ज्यादा दर्द तो नहीं होगा?
3: बिल्कुल नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। नर्स?
4: यस डॉक्टर।
3: जरा मेरे औजार तो देना।
4: ओके डॉक्टर। ले डॉक्टर।
1: क्या डॉक्टर साहब, आप इससे मेरे दांत निकालोगे?
3: हाँ हाँ क्यों?
1: मर जाऊंगा डॉक्टर साहब, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा।
3: लगता है आप बहुत डर रहे हैं।
1: देखो देवी जी, मेरे तो सर घूम रहा है।
0: कोई बात नहीं,
1: बड़े बड़े औजार देखने में डरावने लग रहे हैं।
0: कोई बात,
1: ये डॉक्टर इनसे ही मेरा दांत निकालेगा?
0: अजी मैं कहती हूँ तकलीफ भी तो दूर हो। हो जाएगी। आज सुबह से ही तुमने सारा घर सर्वर उठा रखा है।
3: हाँ, तो आप तैयार हैं दांत निकलवाने के लिए?
1: क्या मतलब? मैं देखता हूँ कौन मेरे दांत को हाथ लगाता है।
3: ये क्या कहते हो?
0: अजी मैं कहती हूँ दांत नहीं निकलवाना। क्या?
1: नहीं बिल्कुल नहीं।
3: ये बैठे बैठाए क्या हुआ? ए हजरत दांत निकलवा लो।
1: बस

0: ये दर्द तो मेरी जान लेकर ही रहेगा।
1: ये दर्द ना हुआ आफत हो गई। मैं पूछती हूँ जी, ये हाय हाय करके सारा घर को सिर पर उठा रखा है। कसम से कहती हूँ, इस दांत को निकलवा क्यों नहीं देते?
0: क्या मतलब?
1: लो अब इन्हें मतलब समझाओ। देखो जी, तुम्हारी जगह अगर मेरे दांत में दर्द होता तो कब का निकाल देती?
0: ठीक कहती हो भगवान, मैं भी यही कहता हूँ।
1: क्या कहती हो?
0: यही कि मेरी जगह अगर तुम्हारे दांत में दर्द होता तो मैं भी कब का निकलवा देता।
1: तो मेरा दांत तो तुम निकलवाने को तैयार हो, और अपना दांत ही जो दर्द कर रहा है क्यों नहीं निकलवा देते? हाय हाय करके मेरे सर में दर्द कर दिया।
0: भाई मेरी तो हिम्मत होती नहीं। हे भगवान, उसे देखा था सुगत को, जब उसने अपना दांत निकलवाया था उसका मुंह कैसा सूज गया था।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये जो हाय दर्द कहकर और चिल्ला चिल्ला कर मेरी बेइज्जती करवा रखी है, उसका क्या करूं?
0: क्या मतलब? यानी कि मेरी हाय हाय करने से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है देवी जी?

0: अजी तुम्हें क्या हो गया है? दर्द तो दूर हो जाएगा, अब दांत निकलवाओ।
1: हरगिज नहीं, मेरे दांत के पास आने की जरूरत भी की तो। चलो घर, फौरन घर चलो, मेरा दांत अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: लेकिन दांत?
1: हम घर जाकर अपना घरेलू इलाज करेंगे मगर दांत नहीं निकलवाएंगे।
0: अच्छा चलो।
2: भाई भाई मेरे दांत तो सुनो, मेरी फीस सुनिए।
0: अजी मैं कहती हूँ उठना है कि नहीं? आए लो, ये तो मजे में सोने लगे। अरे उठो ना।
1: क्या?
0: एक कसम से कहती हूँ, जब से डॉक्टर के पास से आए हो सो ही रहे हो। लो चाय पी लो।
1: मगर पीऊँ कैसे, मेरी तो दांत के तरह से जान निकलने लगी है।
0: ओहो, अभी तो चैन से सो रहे थे, डॉक्टर के पास गए भी और दांत क्यों नहीं निकलवाया? अब मैं क्या करूँ?
1: ऐसा करो, ये चाय तुम पी लो, मेरे तो तरह।
0: हे भगवान, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब चाय भी नहीं पी रहे, मैं क्या करूँ?
3: क्यों बहन शांति, अब कैसा है तुम्हारी इनके दांत का दर्द?
0: क्या बताऊं बहन, इनका तो खाना पीना भी बंद है।
3: अरे ये दर्द भी तो जानलेवा होता है, तुम ऐसा करो।
0: हाँ।
3: इनके जिस दांत में दर्द है ना,
0: हाँ,
3: उसके नीचे ये पत्ते दबा दो, फौरन ठीक हो जाएगा।
0: अच्छा, कैसे पत्ते हैं?
3: एक बार मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तब मेरी माँ ये पत्ते लाई थी।
0: हाँ।
3: मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया था। तो फिर आऊंगी पता करने, सारा घर का काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है।
0: लो जी ये पत्ते मुंह में रख के देख लो।
1: बड़ा चीज़ का टेस्ट है इनका तो।
0: अरे ठीक हो जाएगा, घबराओ मत।
4: कमाल है, मुझे तो कांता ने बताया कि तुम्हारे इनके दांत में दर्द है।
3: अरे हाँ,
4: की आवाज तो आ रही थी, मैंने समझा शायद भाई साहब रोजाना तरदयास कर रहे होंगे।
0: नहीं बहन, ये गर्म पानी के कुल्ले कर रहे थे।
4: अरे हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था कि आज जहाज कुछ लंबा हो गया।
0: हाँ बहन, इनको बहुत तकलीफ है।
4: अरे हाँ, दांत में कुछ लगाया है?
0: अरे सभी कुछ तो लगाया, जिसने जैसा कहा वैसा ही किया।
4: कमाल है, तुम ऐसा करो, ये लहसुन लो, मैं छील कर लाई हूँ, तुम फौरन जिस जगह दांत में दर्द है उसके नीचे दबा दो।
0: लेकिन
4: अरे लेकिन वेकन को छोड़ दी। ले, कमाल है, मीतू बहन भी आ गई। अरे आना आ मीतू।
5: आज मैंने भी सुना था कि इनके पति के दांत में दर्द है, मैंने कहा पड़ोसन के नाते।
4: बहन ये तो हमारा फर्ज है।
5: मेरी बात सुनो बहन।
0: हाँ।
5: वो लहसुन मुँह से निकलवा कर ये मैं जो दवा रुई में लाई हूँ ना, ये रख दो, फिर देखना।
0: लेकिन
5: लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहन, एक बार मेरी माँ के दांत में दर्द हुआ था, तब डॉक्टर ने ये दवा दी थी, बस एक बार लगाई, आज पूरे 5 साल हो गए हैं। मजाल है उनके दांत में फिर दर्द हुआ हो।
4: लेकिन लहसुन तो कोई बुरी चीज नहीं है।
5: अरे तो इस दवाई को भी आजमाने में क्या हर्ज है?
4: अरे कमाल है, देख लेना बहन, कहीं 19-20 ना हो जाए। हाँ।
5: मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? फिर डॉक्टर की दी हुई दवा है, ऐसी वैसी तो होगी नहीं।
0: लड़ने की क्या जरूरत है, लाओ मैं ये भी उनके मुंह में अभी रखे देती हूँ।
4: अरे कमाल है, अच्छा मैं तो चलती हूँ।
5: मैं भी चलती हूँ।
0: ये तो हमारी किस्मत है कि इतना अच्छा पड़ोस मिला है।
5: अरे मेहरबानी कैसी बहन, दुख सुख में पड़ोस को ही तो काम आना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ।
4: अरे आप जा मीतू अब।
5: हाँ बहन रमा चलो अब।
1: हाय राम रे, ओ हाय राम रे, हर गया।
6: दुखी राम जी।
1: कौन है भैया?
6: हाय दुखी राम मां।
1: आओ भाई हिदायती राम आओ।
6: सुना भाई खुशी राम मां, की हाल है? ओए यार एक ही है, मुंह लटका के बैठा है। हां
1: अरे मेरे दांत में दर्द हो रहा है भैया।
6: ओए और की होया तेनु दर्द?
1: हाँ दांत में दर्द है।
6: और कुछ दसेंगा भैया? हाय हाय हाय लगा रहे हैं।
0: ये कैसे बताएं भाई साहब, इनके दांत में बेहद दर्द है, सब इलाज करके देख लिया कुछ बनता ही नहीं।
6: बस कमाल है भाई जी। जरा जी बातें पीछे इतना हंगामा खड़ा कर लिया।
0: जरा सी बात। अरे भाई साहब सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, जिसने जैसी दवा बताई वैसा ही किया, मगर क्या करूं?
6: फायदा नहीं होया। हो ही कितना सकता है प्रजाय जी, कुछ नुस्खे होंगे ना नुस्खे, जो सिर्फ किसी किसी ने मालूम होंगे ने। ओए ठहर जा ठहर जा। ओए ओए गल सुन, ओए दुखी रामा ठहर जा, होनी तन्ना आ ला ला आ ले ए आ रगड़ तन्ना ए आ फल अच्छा वाले ले ले ले ले ले। ओ तेरी किस्मत चंगी है, असि इत्थे आ गए हैं। हां
0: तंबाकू?
6: हां हां
1: मगर इससे क्या होगा?
6: ओए पूछ के ये देना होएगा कि नहीं।
1: अरे
6: और तू भी यार अजीब आदमी है। वेखो देख, दांत च दर्द उदो हुंदा है जो दांत च कीड़ा लगा होवे।
1: कीड़ा?
6: हां कीड़ा। कीड़ा भी उदो लगदा है जद मिठा खादा होवे। ओ तू जरूर मिठा खादा होना है।
1: हां यार कल मैंने लड्डू खाया था।
0: मगर तुमने लड्डू कब खाया जी?
1: अरे भगवान दफ्तर में

0: कांता ने अपनी शादी की खुशी में बांटे थे।
1: तम्बाकू दांदे थल्ले रख ले तो कीड़ा मर जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा।
2: मगर छाटो और मुंह दे अंदर ना जान दी। शाबाश,
3: दर्द ठीक हो जाएगा जी।
0: मुझे
2: दाजी,
0: मुझे तो
2: 5 मिनट लगेंगे।
0: चक्कर आ रहा है।
1: चक्कर आएगा, ओए दंद दे कीड़े नु भी चक्कर आएगा, ओ नटन ले बाहर आएगा।
2: ओए ओए ओए ओए ओ गासन, ओ दुखी रामा, ओ ओ इसके में ले रहे हैं। ओए की होया तेनु?
0: दांत बाहर गिर गया।
3: दिखाओ तो, अरे अपना मुंह तो खोलो।
2: दांत बाहर निकल गए।
0: दांत में दर्द था वो भी, और उसके पास वाले दो दांत भी बाहर।
3: अरे दिखाओ तो सही क्या हुआ?
2: ओए दांत निकल गए सारे।
0: उसके साथ सारे दांत बाहर गिर गए।
2: कितने दांत?
0: दो।
2: दो निकल गए?
0: हां जी।
2: गया ना?
0: ओए दो।
3: दिखाओ तो। हाथ धो लो। चलो सब हॉस्पिटल से चैन से तो सो गए।

हवा महल में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहे।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM 101.9 MHz पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गुंजन।
4: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: गीत गुंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में पहला गाना आपके लिए अग्निपथ फिल्म से अजय गोगावले की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए गीत को संगीत दिया है अजय अतुल ने।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090।
4: लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से शनिवार और रविवार को दोपहर

0: एक बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: साथियों, बॉक्स ऑफिस पर आजकल तो किसी भी फिल्म का क्लैश आम बात हो गई है। हर हफ्ते अधिक से अधिक फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही हैं। इनमें से कुछ धांसू कमाई करती हैं तो कुछ का हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे इस हफ्ते भी जून के महीने का जो तीसरा सप्ताह चल रहा है, इसमें भी महाक्लैश आपको देखने को मिल सकता है। तो बातें करेंगे कार्यक्रम में कुछ फिल्मों की, लेकिन उससे पहले एक गाना आपके लिए। हम आपके हैं कौन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, गीत देव कोहली का और संगीत राम लक्ष्मण का।

दोस्तों, इस हफ्ते जो पहली फिल्म की बात हम कर रहे हैं जो इस हफ्ते रिलीज हो सकती है, फिल्म का नाम है माँ इंटी बंगारम। तेलुगु पारिवारिक एक्शन ड्रामा फिल्म है ये। इसमें समांथा रूप प्रभु लीड रोल में है। इसके जरिए वो पहली बार एक्शन मोड में नजर आने वाली हैं। फिल्म में वो अकेले ही लीड एक्टर हैं। ये एक महिला प्रधान फिल्म है जो समांथा पहली बार कर रही हैं और फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। ये 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक और गीत आपके लिए कार्यक्रम में आशिकी 2 फिल्म से तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत है संगीत जीत गांगुली का।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: एक आवश्यक सूचना आपके लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, उत्साह और जोश का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा बच्चा जो भारतीय नागरिक हो तथा भारत का निवासी हो, वह इसमें प्रतिभाग कर सकता है। आयु सीमा है 31 जुलाई 2026 को। प्रतिभागी बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का कार्य, घटना और उपलब्धि नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए। विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। बच्चे स्व नामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। ये पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए वेबसाइट awards.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोता, 19 जून की रिलीज की हम बात कर रहे थे, तो इस दिन रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 भी रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन भी लीड रोल में होंगे। ये एक रोमांटिक ड्रामा बॉलीवुड फिल्म है, जिसकी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है, जिसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। पहली बार होगा जब रश्मिका और समांथा बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने होंगी। कार्यक्रम में अगला गाना आपके लिए, चलते चलते फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में आदेश श्रीवास्तव का लिखा हुआ गीत है। संगीत, माफ कीजिएगा, गीत बाबू मान का है और संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

0: की बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: 19 जून को एक और फिल्म जिसका नाम है डोडमांसा, ये भी एक्शन ड्रामा और रोमांटिक कन्नड़ फिल्म है जो इस हफ्ते सिनेमाघरों में आने वाली है। इसमें शरद कृष्ण लीड रोल में है और इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया है। एक और फिल्म आ रही है दीवाना। रोमांटिक ड्रामा फिल्मों के शौकीन अगर आप हैं तो तेलुगु की फिल्म ये है दीवाना, जो 19 जून को ही रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन किया है श्रीकांत संगी शेट्टी ने। बालन द बॉय भी फिल्म एक मलयालम फिल्म है जो इस दिन रिलीज हो रही है। ये एक सर्वाइकल ड्रामा फिल्म है, इसे भी सिनेमाघरों में 19 जून को रिलीज किया जाएगा। ये हिंदी समेत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इसमें एक बच्चे बालन की कहानी देखने को मिलेगी जो मुश्किल बचपन से जूझ रहा है, साथ ही अचानक गायब हुए माँ बाप को भी ढूंढ रहा है।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी

0: के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुनरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAP 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो जो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है, मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की

कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।

0: जल डमरु मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट

0: Department of Fertilizers, Vandana Prayashi, said that the overall stock position of fertilizers in the country is normal. Director in the Ministry of Port Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said that the LNG carrier Disha, with 62,370 metric tons of cargo, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to reach the Dahej port in Gujarat on Thursday. In the FIFA World Cup football, Spain will play against Cabo Verde in the Group H clash at Atlanta, United States tonight. The match will begin from 9:30 p.m. Indian time. Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match in Mexico earlier in the day. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of Northeast, Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The Met Department has issued an orange color warning for thunder squall conditions in West Rajasthan for tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Bihar, the Andaman and Nicobar Island, Chhattisgarh, Karnataka, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, West Bengal and Sikkim during the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labour migration, digital technology and defence. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. The French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in the US tonight. And that's all in the news at night. Good night.
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
5: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
7: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
6: अब ECHS से इम्पैनल्ड, आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज,
7: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
6: कैशलेस इलाज, आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा, बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
8: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
9: आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का
10: और नेहा तिवारी का नमस्कार।
9: नेहा जी,
10: जी
9: आपकी खनकती हुई आवाज ये बता रही है कि लगता है कि श्रोताओं के ढेर सारे संदेश आपके हाथ में हैं।
10: बिल्कुल, हमारे बहुत सारे श्रोता आकाशवाणी अयोध्या से जुड़ चुके हैं और दूर दूर के श्रोता हैं जो हमें संदेश भेजते हैं, बराबर हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं और अपनी शिकायतें भी भेजते हैं।
9: यानी मेरी तरह आप मानती हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमारे इतने ढेर सारे श्रोता आकाशवाणी अयोध्या के साथ जुड़े रहते हैं।
10: जी,
9: तो हम लोग क्यों समय का सदुपयोग करें और पहला संदेश किसका है इसको देखें।
10: जी, पहला संदेश जो हमारे पास आया है वो विजय यादव का जौनपुर बदलापुर डड़वा से आया है।
9: हाँ, क्या लिखते हैं यादव जी?
10: लिखते हैं कि सर, आपके संदेश आपके गीत में हमने संदेश भेजा मगर पढ़ा नहीं गया। हमें कोई शिकायत नहीं है मगर बस इतना जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं ये संदेश हमारे शामिल होते हैं कार्यक्रम में।
9: यही तो असली मसला है।
10: और आगे लिखते हैं कि सभी कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा कहना है कि जैसे ज्ञान ही

0: वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे और अज्ञान रूपी अंधकार को पल भर में मिटा देता है।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात कहा विजय जी ने
0: जी। और उसी प्रकार 101.9 FM बैंड भी ज्ञान का खजाना है।
1: क्या बात है, कितनी प्रशंसा की इन्होंने। और नेहा, हमको लगता है कि इनका संदेश जो था पत्र उत्तर कार्यक्रम में शामिल इसलिए नहीं हुआ कि हमको मिला नहीं था।
0: जी, मिला नहीं था।
1: अगर मिला होता तो जरूर शामिल हुआ होता, या हो सकता है किसी व्यवधान के कारण सम्मिलित न हो पाया हो। कभी कभी समय अवधि कम होने के कारण कुछ लोगों के संदेश शामिल नहीं हो पाते, तो मैं समझता हूँ कि क्षमा करेंगे और आगे अपनी खतों किताबत बनाए रखेंगे।
0: जी, अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो बहुत दूर से आया है, कर्नाटका से।
1: लिखने वाली
0: हमारे श्रोता है श्यामला, अश्विनी और मनवित, आनंद, रमेश, प्रकाश, ये सभी ने मिलकर ये संदेश हमें लिखकर भेजा है।
1: कर्नाटक, केरल, कहाँ बताया आपने?
0: जी, कर्नाटक स्टेट चिन्ना तिरुपति से।
1: बिल्कुल, और हिंदी में इन्होंने या अंग्रेजी में संदेश भेजा है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी अयोध्या से जुड़ने के लिए इनको धन्यवाद करते हैं। अब बताइए क्या लिखा है इन्होंने?
0: लिखा है ऑल प्रोग्राम्स आर गुड, इनको सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हाँ,
0: और आकाशवाणी अयोध्या के सारे प्रोग्राम सुपर डुपर होते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: आगे लिखते हैं कि जो एवरीडे प्रोग्राम आता है व्हाट्सएप वाला, आपके संदेश, आपके गीत, इनको बहुत ही ज्यादा वो भाता है। फेसबुक के भी सारे कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कुछ तुमने कहा हमारे यहाँ से प्रसारित होता है, वो भी इनको बहुत पसंद आता है। ये 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मोबाइल से हटते नहीं है,
1: यानी रेगुलरली 1 से 2 बजे के बीच जो अपना कार्यक्रम है आकाशवाणी अयोध्या का, ये बराबर श्यामला जी और इनके मित्रगण सुनते रहते हैं।
0: जी, और इन्होंने लिखा है संदेश हमारा जरूर शामिल करिए, और अगर आप शामिल करते हैं तो उसके लिए शुक्रिया।
1: बिल्कुल, आपका संदेश शामिल हुआ, और जो शुक्रिया है वो आकाशवाणी अयोध्या की तरफ से आपके लिए है कि इतनी दूर से भी आपने अपना स्नेह बनाए रखा है और ऐसे ही आगे भी बनाए रखें, यही उम्मीद करते हैं।
0: जी, अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो बलेश्वरी धाम रेडियो श्रोता संघ की ओर से आया है, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से।
1: जी,
0: लिखने वाले हमारे श्रोता है नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू और प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू,
1: यानी पूरा साहू परिवार।
0: जी, पूरा साहू परिवार ये संदेश भेजता है।
1: हाँ।
0: लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित कार्यक्रम फिल्मी गीत और अवधि गीत जो भी सुनाए जाते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं, रोचक होते हैं, और आपके यहाँ से मनोरंजन ज्ञान वर्धक कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए जाते हैं बहुत ही इन्हें पसंद आते हैं।
1: जी जी,
0: और समय पर सुनने को मिलते हैं, मतलब अच्छा, इनके समय के हिसाब से वो सुनने को मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जिंदगी समर जाती है इनकी।
1: क्या बात है, क्या बात है, यहाँ से ज्ञान मनोरंजन के जो कार्यक्रम आपके लिए आते हैं ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाभप्रद होते हैं, ये जान के बड़ी प्रसन्नता हुई।
0: जी, लिखकर भेजते हैं कि आपका नियमित श्रोता हूँ मैं।
1: तो बहुत ढेर सारा स्वागत आकाशवाणी परिवार की तरफ से नारायण साहू जी और आपके संपूर्ण परिवार का, आगे भी ऐसे ही आप अपना संदेश भेजते रहेंगे ये उम्मीद है।
0: जी, अगला जो संदेश आया है वो ऐशबाग लखनऊ से आया है, एडवोकेट वारिस अली खान का।
1: हाँ, जो बराबर संदेश भेजते रहते हैं वारिस जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ।
0: जी, लिखते हैं आवाज की दुनिया के प्यारे दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम।
1: बिल्कुल, हम लोगों की तरफ से भी इनको नमस्कार।
0: लिखते हैं कि मैं 5 महीने से बीमार चल रहा हूँ जिस कारण मैं कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा हूँ।
1: बिल्कुल, मैंने भी बीच में सोचा था कि इधर कुछ दिनों से इनका कोई संदेश हमको नहीं मिला था वारिस भाई का। हाँ,
0: लेकिन मैं कार्यक्रम सुनता जरूर हूँ, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, आप सभी को दुआ है, और आप सभी मुझे बहुत ही याद आते भी हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें याद रखें भी।
1: बिल्कुल वारिस भाई, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और फिर से कार्यक्रमों की अपनी खतों किताबत जो है वो जारी रखें। हमें उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के ये काम शुरू करेंगे।
0: जी, अगला संदेश हमारे पास आया है चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत से। लिखने वाले हमारे श्रोता है कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नवोदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, माधुरी चौहान, रत्ना चौहान, ध्रुवी और प्रद्युम्न चौहान।
1: सारे लोग क्या मिलके क्या संदेश भेज रहे हैं।
0: सबसे पहले तो शुरुआत में लिखते हैं जय जय श्री राधे, और आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारी बधाई।
1: बिल्कुल, धन्यवाद इस बधाई के लिए।
0: बहुत ही सुंदर सी लाइन्स लिखकर भेजी है, बनावटी कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, बनावटी कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती और अच्छों की अच्छाई छुपी छुपाई नहीं जाती।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो जैसा स्वरूप है वो निखर

0: के बाहर आता है, बहुत देर तक उसको छुपा नहीं सकते आप
1: जी। अगला जो संदेश है हमारे पास वो माँ बलेश्वरी धाम सांकरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता है नारायण लाल साहू और इनका पूरा परिवार।
0: अच्छा, इसके पहले भी इनका एक
1: संदेश आया था। ये पिछली बार के आपकी बात का संदेश था जो शामिल नहीं हो पाया था,
0: बिल्कुल।
1: और ये एक दूसरा संदेश है जो उन्होंने इस बार भी भेजा है।
0: तो साहू परिवार ने नया नया संदेश में क्या भेजा
1: जी? नए संदेश में इन्होंने लिखा है कि पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
0: बिल्कुल, जैसे आप जागरूक हैं, हमें उम्मीद करेंगे कि हमारे सारे श्रोता इस बात को लेकर जागरूक रहें कि इस समय पेड़ लगते हैं जब बरसात के दिनों में, तो आगे उनका बहुत सुंदर स्वरूप खिलता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि अयोध्या केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम बहुत ही रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक लगते हैं। डॉक्टर की सलाह और युवा जगत का कार्यक्रम
0: इनको अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की शिक्षाप्रद जानकारी सुनने में इनको बहुत आनंद आता है, और जितने भी जानने वाले कार्यक्रम हैं जिनमें से जानकारी इनको मिलती है, बहुत ही निराले लगते हैं सारे कार्यक्रम, और सभी की लाजवाब जो प्रस्तुति होती है वो इनको बहुत पसंद अच्छी आती है।
0: देखिए साहू जी, आप ऐसे ही हमारे सारे कार्यक्रमों को सुनते रहें, गुनते रहें और अपने संदेश हम तक भेजते रहें, यही उम्मीद है
1: जी। अगला संदेश हमारे पास तक आया है विनोद वंडलकर, वीड़ा वंडलकर और विविधा वंडलकर का, रायपुर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या संदेश है इनका, क्या
1: आप सभी लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या के लगभग सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, मनोरंजक लगते हैं। कुछ तुमने कहा और अवधि लोकगीत जो है इनको सुनने में बहुत
0: अच्छा
1: पसंद आते हैं।
0: अब देखिए ये कहाँ के हैं, लेकिन इनको अवधि लोकगीत भी अच्छा लगता
1: इनको
0: है,
1: पसंद आती है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने यहाँ के कार्यक्रमों को सुनते हैं, गुनते हैं और आपके मन में जो आया है वो भाव आप आकाशवाणी अयोध्या तक प्रेषित करते हैं
1: जी। अगला संदेश कोका भिलाई से हमारे पास तक आया है। लिखने वाले श्रोता है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल।
0: यानी ढेर सारे उत्तम सिंह परिवार के लोग
1: जी।
0: और लिखते क्या है, कहते क्या है? ये
1: लिखते हैं कि हर बूंद में जीवन है, हर वर्षा में आशा है। इस लाइन के साथ इन्होंने शुरुआत की है और आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इनको सभी बहुत पसंद आते हैं। अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।
0: बिल्कुल धन्यवाद, आकाशवाणी अयोध्या की तरफ से भी आप लोगों को कार्यक्रमों को सुनने, गुनने और अपनी बातों को हम तक भेजने के लिए
1: जी।
0: अगला संदेश किसका है?
1: अगला संदेश है नसीबुल हसन का, गांव जखौली, पोस्ट हलौर, सिद्धार्थ नगर से।
0: क्या लिखते हैं हसन जी?
1: आप लिखते हैं कि हम आपके पास व्हाट्सएप पे अपना फरमाइशी गाना लिखकर भेजते हैं, पर आपके पास तक वो पहुंचता नहीं है।
0: ओ, ऐसा क्यों?
1: अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखकर भेजें तो क्या पहुंच जाएगा? मुझे लगता है कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखकर नहीं भेजते हैं, इसीलिए मेरी फरमाइश शामिल नहीं होती।
0: अच्छा, तो इनको एक बार बताना जरूरी है
1: जी। इनको शुरुआत बस कैपिटल लेटर से करनी है, ASAG लिखें।
0: मुझे उम्मीद है कि नसीबुल हसन जी ध्यान से सुन रहे होंगे
1: जी। कैपिटल लेटर में ASAG लिखें और अपना नाम लिखें, पता लिखें, अपनी बात जो भी गाना इनको सुनना है वो लिखकर हमें भेज दें 830-32-19-911 इस नंबर पर।
0: 830-32-19-911 पर ये भेज दें तो जरूर शामिल होंगे नसीबुल जी।
1: और समय का भी थोड़ा ध्यान रखें कि रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में ही अपनी फरमाइश भेजें, क्योंकि उसके बाद जो संदेश होते हैं वो हम लोग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए चुन लिए जाते हैं, तो फिर वो शामिल नहीं हो पाते उसके बाद के संदेश।
0: इसका भी ध्यान रखना विशेष आवश्यक है कि 10 से 4 के बीच में ही आप अपना संदेश जो है वो इस जो नंबर बताया गया उस पर डाल दें।
1: अगला संदेश आया है हमारे जो रेगुलर श्रोता है रूपेश मिश्रा जी का, टिकरी नवाबगंज गोंडा से।
0: रूपेश जी,
1: जी हर कार्यक्रम में लगभग आपका संदेश हम
0: बिल्कुल
1: शामिल
0: करते हैं। बिल्कुल,
1: आकाशवाणी की पूरी टीम को नमस्कार।
0: नमस्कार रूपेश जी, आपको आकाशवाणी की तरफ से भी।
1: आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी अयोध्या के 33वें वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: भाई धन्यवाद इस बात के लिए रूपेश जी कि आप कितनी शिद्दत से इन सारी चीजों को याद किए हुए हैं, ये बताता है कि आपका स्नेह जो है आकाशवाणी अयोध्या के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है।
1: आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार से आकाशवाणी अयोध्या हम तक ज्ञान, सूचना और मनोरंजन के विभिन्न प्रकार हम तक पहुंचा रहा है, इसके लिए हम आकाशवाणी अयोध्या की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं।
0: धन्यवाद रूपेश जी।
1: अगला संदेश हमारे पास तक आया है बेलसर गोंडा से। अनु पांडे, रिवांशी पांडे, माही पांडे, किया, ये सभी लोगों ने लिखकर

0: संदेश हमारे पास तक भेजा है।
1: हाँ, क्या लिखा है इन्होंने अनुजी ने?
0: लिखते हैं कि सुबह की किरणों ने आकर ये पैगाम दिया है।
1: क्या बात है,
0: फूलों ने हंस के सलाम किया है।
1: ओहो, हाँ।
0: हमने आपकी बात में नेहा मैम और संजय सर को प्रणाम किया है।
1: भाई नमस्कार नेहा, मेरी और पूरे आकाशवाणी
0: टीम की ओर से, बिल्कुल
1: आप सभी को
0: खुदा इतनी खुशियां दे आपको जितने आसमान में सितारे हैं। हर पल ऐसा ही महकता रहे जैसे बागों में नजारे हैं।
1: नेहा
0: जी,
1: अगर इन लोगों का संदेश ऐसे ही आता रहेगा तो सचमुच में आकाशवाणी परिवार में खुशियां जो हैं वो बरसती रहेंगी, और महकता भी रहेगा गुलशन यहाँ का।
0: जी लिखती हैं, स्थापना दिवस मुबारक हो आकाशवाणी अयोध्या को, क्योंकि यही तो सभी के दिलों के प्यारा है और फूलों की खुशबू हवाओं का साथ आकाशवाणी अयोध्या है।
1: क्या बात है, इसी से तो हम सभी जुड़े हैं।
0: जी, आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम बहुत ही खास है जो दिल को भरते हैं और मन को लुभाते हैं।
1: क्या बात है,
0: हर बार गीत गुंजन हो या हेलो अयोध्या हो, हर किसी को रहता है इस शो का इंतजार। आकाशवाणी अयोध्या को स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही फलता फूलता रहे आकाशवाणी अयोध्या और अच्छे अच्छे कार्यक्रम सबको सुनाता रहे।
1: जैसे हमारे श्रोताओं की कल्पना है
0: जी,
1: कि आकाशवाणी अयोध्या ऐसे ही फलता फूलता रहे, वैसे ही आकाशवाणी परिवार की भी एक कामना है कि ऐसे ही हमारे श्रोता हमेशा प्रसन्न होकर के आकाशवाणी परिवार के साथ, आकाशवाणी अयोध्या के साथ जुटे रहे।
0: जी, जुड़े रहे, अपना स्नेह बनाए रखे और अपने संदेश यूं ही हमें भेजते रहे।
1: बिल्कुल नेहा जी। तो नेहा जी, एक चीज कहना चाहेंगे कि ये जून का महीना है और बरसात आने वाली है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो पर्यावरण को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ वृक्षारोपण कर सकें, अगर हम अपने सभी श्रोताओं से ये गुजारिश करें कि एक ही वृक्ष कहीं भी अवसर देख के लगा दें, तो इस पर्यावरण को सुंदर बनाने में हम सभी का
0: एक सही
1: योगदान रहेगा। तो इस बार का संकल्प जो है हमारे श्रोताओं को यही रहे कि एक वृक्ष जरूर लगाएं और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें।
0: और एक बात और है कि वृक्ष लगाएं और उसका उसकी देखभाल भी करें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग पेड़ लगा तो देते हैं,
1: छोड़ देते हैं,
0: मगर बाद में उसका उसकी देखभाल करना,
1: पेड़ सूख जाते
0: हैं। जी, पेड़
1: सूख जाता है। एक ही वृक्ष की कल्पना की, एक लगाएं, उसको संचित करें, उसका विकास करें।
0: बिल्कुल। और यकीन मानिए कि जब आप अपना लगाया हुआ वृक्ष बड़ा होते हुए देखेंगे तो आपको बहुत
1: आनंद से भर जाएंगे। अपनी लगाई हुई बगिया में बहुत मनमोहक दृश्य उत्पन्न होता है जिसको देख करके आत्मा आह्लादित होती है। ऐसे ही देखिए घड़ी इशारा कर रही है, तो लेते हैं हम लोग कार्यक्रम से अगले सप्ताह तक के लिए विदा और श्रोताओं से कहते हैं
0: नमस्कार।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 MHz पर। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
4: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
3: हेलो अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सूरज सिंह। डायल करें हमारा नंबर 7376804090। कीजिए हमसे बातें, सुनिए अपने पसंद का गाना।

0: हेलो।
1: हेलो, हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्ते, कहाँ से कॉल किया आपने? नाम बताइए अपना।
1: हाँ सर, मैं भरत लाल बोल रहा हूँ। मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ। मैं दोनों को सर दिव्यांग हूँ।
0: जी,
1: हाँ
0: भरत
1: सर,
0: लाल जी,
1: आपका नाम
0: रेडियो
1: क्या है सर? मेरी बात किससे हो रही है? और
0: आपकी बात सूरज से हो रही है।
1: बताइए कैसे हैं सर? बस
0: सब बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: कुछ नहीं सर, इस समय मैं पढ़ाई करता हूँ सर। दोनों को सर
0: अच्छा,
1: दिव्यांग।

0: जी जी तो क्या कर रहे हैं पढ़ाई में इस समय?
1: पढ़ाई में जैसे ये ब्रेल सीखते हैं ना, हम लोग का ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाई
0: जी
1: होता
0: जी,
1: है।
0: जी जी
1: जी
0: अच्छा तो आज गाना कौन सा सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: सर आप गाना हमें ये सुना दीजिए
0: जी,
1: प्रेम रतन धन पायो,
0: इसी मूवी का। हेलो,
1: मूवी का नाम तो नहीं पता है सर।
0: हाँ वही टाइटल ही है, उसी मूवी वही है, प्रेम रतन धन पायो का टाइटल सॉन्ग सुनना है। ठीक है तो प्रोग्राम हमारे सुनते हैं?
1: जी जी हम सुनते हैं लगातार सर, हम रेडियो के बहुत बड़े फैन हैं सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: रेडियो बिना हमारा सर ध्यान नहीं पड़ता सर।
0: जी जी तो जी। ब्रेल लिपि से क्या कोई क्लास वगैरह में पढ़ रहे हैं अभी? कौन सी क्लास में क्या या क्या कर रहे हैं उसमें?
1: सर नाइन्थ में है।
0: अच्छा नाइन्थ में है। जी जी
1: हम लोग का पेपर आयता द्वारा होता है।
0: जी जी जी
1: जैसे आप जैसे बारहवीं में है तो आप जूनियर राइटर लेके जाएंगे।
0: जी जी जी
1: जी
0: बहुत अच्छा,
1: आप सीनियर राइटर नहीं ले जा सकते।
0: जी जी जी
1: जी ऐसा है।
0: ठीक है भरत लाल जी, सुनिए अपनी पसंद का गाना प्रेम रतन धन पायो फिल्म से, उसी का टाइटल सॉन्ग है, पलक मुछाल और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।

0: हेलो हेलो।
1: सर नमस्ते
0: नमस्ते, कहाँ से कॉल किया आपने? अयोध्या
1: सर, बड़ी मुझे आने आज अयोध्या से। यस
0: से?
1: सर।
0: क्या नाम है?
1: सर अजय।
0: अजय।
1: यस सर।
0: क्या करते हैं अजय जी?
1: सर पढ़ाई करते हैं सर,
0: कौन सी क्लास में?
1: राष्ट्रपति पब्लिक स्कूल
0: नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं इस समय? अच्छा,
1: सर फोर्थ।
0: फोर्थ में पढ़ रहे हैं। हेलो,
1: यस सर।
0: तो क्या सुनेंगे अजय जी आज कार्यक्रम में?
1: क्या सर?
0: कौन सा गाना सुनेंगे?
1: सर बॉर्डर फिल्म का गाना सुनने से आते हैं।
0: बॉर्डर से? हेलो,
1: यस सर।
0: फिल्म देखी है ये वाली बॉर्डर?
1: बॉर्डर फिल्म कबीर
0: हाँ नहीं,
1: से आते हैं।
0: हाँ हाँ ठीक है, ये आपको सुनवा दे रहे हैं हम। ये हम कह रहे हैं कि फिल्म आपने देखी है,
1: यस सर।
0: पुरानी वाली बॉर्डर जिसका गाना सुन रहे हैं आप, देखी है?
1: सर।
0: अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा। ठीक है, आपको सुनवा दे रहे हैं ये गाना बॉर्डर फिल्म से, सोनू निगम और रूप कुमार राठौर साथियों की आवाज में। ठीक है, ठीक है जी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कॉल किया आकाशवाणी में, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: हेलो,
4: नमस्ते सर।
3: नमस्ते, कहाँ से कॉल किया आपने?
4: कोटसराय जिला से, मनीषा बोल रही
3: हूँ। कोटसराय से क्या नाम बताया आपने? मनीषा। नाम क्या बताया?
4: हेलो
3: जी, अपना नाम बताएं फिर से।
4: हेलो
3: जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको?
4: हेलो
3: हेलो
4: जी सर, नमस्ते।
3: नमस्ते, कह रहे हैं कि मेरी आवाज मिल रही है आपको?
4: मिल रही है सर।
3: हाँ, तो नाम बताइए अपना।
4: मनीषा यादव, कोटसराय जिला विद्या से।
3: जी मनीषा जी, क्या करती हैं?
4: जी सर,
3: कह रहे हैं क्या करती हैं? घर पे रहती हैं कि कोई काम करती हैं?
4: पढ़ाई करते हैं सर।
3: पढ़ाई कौन सी क्लास में?
4: सेवेंथ
3: में
4: जी।
3: अच्छा, तो गीत कौन सा सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
4: जी,
3: गाना कौन सा सुनेंगी?
4: जिगर फिल्म का मैंने खत में वो का नाम लिखा।
3: जिगर से?
4: जी सर।
3: अच्छा, तो इसके पहले भी कभी कॉल लगाया है?
4: जी सर, मैंने एक साल में 3 बार कॉल लगाया।
3: अरे वाह, तब
4: तो बहुत कोशिश कर रही थी सर।
3: अच्छा ठीक है, तो कार्यक्रम में सुनिए अपनी पसंद का गाना जिगर फिल्म से, साधना सरगम, अभिजीत भट्टाचार्य और साथियों की आवाज में।
4: जी सर, नमस्ते।
3: नमस्ते।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: हेलो
2: हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
2: आशीष, शिमला से कॉल किया आपने?
1: जी, मैं राकेश।
2: जी
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
2: जी, वहाँ प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे?
1: जी बिल्कुल सुन रहा हूँ।
2: किस पे? ऐप पे।
1: ऐप पे
2: जी। कैसे लगते हैं प्रोग्राम हमारे?
1: जी आपके प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं और नियमित रूप से सुनता हूँ, खासकर जो आपकी जो युवा संवाद आता ना, वो 5:00।
2: हाँ
1: उसमें भी जुड़ता हूँ मैं।
2: अरे वाह।
1: जी
2: तो आज क्या सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: आज मुझे एक गाना सुनना है और फिल्म का नाम है दुश्मन और बोले आवाज दो हमको हमको।
2: जी तो लता मंगेशकर की आवाज में सुनेंगे?
1: ये उदित नारायण और लता मंगेशकर।
2: जी
1: ये सुनने।
2: ठीक है, आकाशवाणी आपने कॉल किया, सुनिए अपने पसंद का ये गाना।
1: जी धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी स्वागत है, नाम बताएं।
3: हेलो सर, मैं साक्षी वाले गोंडा से बात कर रही हूँ।
2: गोंडा से क्या नाम बताया आपने?
3: साक्षी पांडे।
2: साक्षी पांडे जी।
3: यस सर।
2: क्या करती हैं साक्षी जी?
3: सर मैं तो पढ़ाई करती हूँ।
2: अच्छा, आज से पढ़ाई वाली कॉल लगा रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं?
3: यस सर। मैं तो इसमें बैठ के पढ़ रही थी।
2: इसमें बैठ के पढ़ भी रही हैं आप?
3: यस सर।
2: और गाने भी सुन रही हैं आकाशवाणी से?
3: यस सर।
2: कौन सा गाना सुनेंगी आज?
3: सर मुझे सूरज सिंह का गाना सुनना है। कोई भी सुना दीजिए।
2: सूरज फिल्म से कोई भी गाना?
3: यस सर।
2: ठीक है, बाहर फूल बरसाओ सुना दे।
3: सर सुना दीजिए।
2: ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ क्या पसंद है आपको?
3: सर मुझे तो खेलना सबसे ज्यादा पसंद है और घूमना।
2: अच्छा, खेलने में?
3: सर अयोध्या भी आई थी।
2: अच्छा, तो खेलने में कौन सा खेल खेलती हैं?
3: सर क्रिकेट।
2: अरे वाह, बढ़िया। चलिए ठीक है, आपको सुनवा दे रहे मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का ये गाना आकाशवाणी आपके कॉल।
3: मुझे कुछ कहना है।
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: सर आप इतने देर को क्यों कॉल उठाते हैं?
2: देर में कॉल क्यों उठाते हैं? अब एक गाना प्ले होता रहता है, उसके बीच में बहुत सारे काम भी होते हैं आकाशवाणी में, ठीक है? तो वो करते रहना पड़ता है, साथ साथ में आपसे बात होती है, गाने प्ले होते हैं, ठीक है?
3: आज आपसे पहली बार बात हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: चलिए बहुत बहुत
3: धन्यवाद। ख्वाहिश थी मेरी पूरी हो गई आपसे बात करके।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।
3: नमस्ते
2: नमस्ते।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
2: 7376409 ये है हमारा नंबर, करिए इस पे कॉल, करिए हमसे बातें और सुनिए अपने पसंद का गाना। हेलो
3: हेलो
2: जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार सर जी।
2: नमस्ते, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया?
3: हमने घाटमपुर से, जिला अयोध्या से।
2: अच्छा, अयोध्या से ही कॉल कर रहे हैं।
3: हाँ सर।
2: क्या नाम है सर?
3: हमारा नाम जुगाड़ी है।
2: जुगाड़ी?
3: हाँ।
2: अच्छा सर, तो कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
3: गाना हमको सुना दीजिए, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप पहना गई नखरे वाली का।
2: फिल्म का नाम बताएं।
3: अभिंगल, नया दौर पिक्चर का है ये।
2: नया दौर। ठीक है, और क्या करते हैं आप?
3: हम तो सब जनता की सेवा करते हैं।
2: जनता की सेवा करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम है।
3: गेहूँ की पिसाई करके सबको रोटी खिलाते हैं।
2: अरे वाह, किसान है आप?
3: हाँ।
2: अरे अरे, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरह से आपने अपने आप को प्रस्तुत किया, बहुत ही गर्व की बात है। किसान और जवान ही हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सुनिए अपने पसंद का गाना, आपको सुना दे रहे हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में, नया दौर फिल्म का ये गीत है। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत,
3: नमस्कार।
2: नमस्ते।

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: नमस्कार
2: नमस्कार, कहाँ से कॉल किया सर?
3: वजीरगंज से।
2: जी
3: वजीरगंज फैजाबाद से।
2: वजीरगंज से आपने कॉल किया है, नाम बताइए अपना। जी
3: आवाज सफा नहीं आ रही है।
2: हम कह रहे हैं कि अपना नाम बताएं।
3: मोहम्मद नसीर।
2: मोहम्मद नसीर। क्या करते हैं सर?
3: लकड़ी मंडी है।
2: अच्छा अच्छा, तो वहीं पर रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं?
3: रेडियो सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
2: अच्छा, कैसा लगता है?
3: बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है आपका, आकाशवाणी फैजाबाद का।
2: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गाना आज सुनेंगे?
3: हम नील कमल से गाना सुनना चाहते हैं।
2: नील कमल से कौन सा गीत?
3: आ गया
2: तुझको पुकारे मेरा प्यार, मोहम्मद रफी की आवाज में। ठीक है, आपको सुनवा दे रहे हैं अपनी पसंद का ये गाना। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो सर,
0: नमस्ते। नाम बताइए अपना।
1: नमस्ते।
0: रीता जी, कहाँ से कॉल किया आपने?
1: जी सर, रीता बोल रहे हो? जी सर, चंडीपुर नगारा, तहसील बीकापुर,
0: बीकापुर, अयोध्या से?
1: जिला जगदिया सर, चंडीपुर नगारा मेरा गांव है, तहसील
0: जी जी जी
1: बीकापुर लगती है।
0: जी जी क्या करती हैं?
1: सर हम तो काम करते हैं, दिहाड़ी लेबर का काम करते हैं।
0: अच्छा, तो गीत हमारे कब सुन पाती हैं? रात में सुनती हैं, दिन भर सुनती हैं?
1: रात में सुनते हैं सर, दिन भर लगाए रहते हैं।
0: अच्छा, तो कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है आपको?
1: हमको सर सुबह वाला, पहली बात तो ये जो भजन चलता है
0: साढ़े 7 बजे,
1: ये अच्छा लगता है ज्यादा। आज वाला बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे भोलेनाथ
0: अच्छा। जी जी जी तो आज क्या सुनेंगी
1: के। और
0: कार्यक्रम में?
1: जी,
0: कार्यक्रम में आज क्या सुनेंगी? इस समय कौन सा
1: आज
0: गाना
1: इस
0: सुनेंगी?
1: समय आज सुनेंगे जिंदगी और तूफान का गाना सर, जो
0: जिंदगी
1: पहला गाना
0: और
1: चलता है।
0: तूफान, ये फिल्म का नाम है?
1: हाँ, फिल्म का नाम है सर।
0: ये फिल्म हमारे पास नहीं है।
1: है सर, यही गाना है जिंदगी और तूफान का, यही फिल्म का नाम है सर।
0: ये फिल्म का नाम है जिंदगी और तूफान।
1: हाँ
0: ये फिल्म तो नहीं दिख रही है हमारे पास अभी, कोई और
1: अच्छा
0: गीत?
1: गाने की बोल चाहिए। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले, एक आंचल का मुझे प्यार मिले।
0: हाँ, ये गीत तो ठीक है आपका, लेकिन ये जो आप फिल्म बता रही हैं उससे नहीं लग रहा है हमें।
1: जी सर, हो सकता है हमसे मिस्टेक हुआ हो, मतलब पूरा याद ना हो,
0: जी
1: लेकिन गाने की बोल सर यही है,
0: जी मैंने मंजिल को तराशा।
1: मुझे बाजार मिले।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: ठीक है, हम
1: मुझे अच्छा
0: आपका ये
1: लगता है
0: गीत
1: गाना।
0: कोशिश कर रहे हैं खोजने का। इसके अलावा बताइए क्या करती हैं आप? मतलब प्रोग्राम तो सुनती हैं हमारे।
1: जी सर, प्रोग्राम सुनते हैं सर, वही काम करते रहते हैं, मसाला बनाओ, ईटा दे, बस
0: जी जी जी ये फिल्म तो आप सही बता रही हैं, जिंदगी और
1: बाकी
0: तूफान, लेकिन है नहीं हमारे पास यहाँ पर।
1: जी नहीं है, लेकिन जाना तो हो सर, तो गाने ही चला दीजिए।
0: नहीं तो फिल्म से ही गाने यहाँ पर खोजने के से मिलते हैं, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत होगी इस तरह से खोजने में इसमें। कोई और गाना
1: अपने
0: बताएं?
1: पसंद का सुना दीजिए, कोई पुराना गाना।
0: अच्छा, कोई पुराना गाना आपको
1: जी सर,
0: सुनना है?
1: पहली बार तो आपसे बात हुई, और हमें अमरजीत सर से होती थी।
0: चलिए, आपको जंजीर फिल्म का गीत सुना दे रहे हैं, यारी है ईमान।
1: जी सुना दीजिए।
0: ठीक है,
1: और सर
0: आकाश।
1: अच्छे हैं?
0: हाँ बढ़िया, ठीक है, आपको ये गीत सुना दे रहे हैं। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी
1: जी सर,
0: पसंद का ये
1: नमस्ते।
0: गीत।

वाला हम सफर हम राज हों ता कयामत जो

0: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
1: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
0: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
1: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
0: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
0: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: तिहत्तर छिहत्तर अस्सी चालीस नब्बे डायल करें, करिए हमसे बातें, सुनिए अपने पसंद का गाना। हेलो,
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्ते, नाम बताइए सर अपना।
3: मेरा नाम राकेश है।
2: राकेश जी, कहाँ से कॉल किया?
3: जड़ौली सर।
2: जड़ौली
3: जी सर।
2: कहाँ पड़ता है? अयोध्या में
3: जी, कुमार गंज।
2: जी जी, क्या करते हैं आप?
3: ये सर पढ़ाई करते हैं।
2: पढ़ाई करते हैं, क्या कर रहे हैं पढ़ाई में इस समय? जी? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं या क्या तैयारी वगैरह कर रहे हैं कुछ?
3: जी सर, अपनी तैयारी कर रहे हैं सर।
2: अच्छा अच्छा, तो कौन सा गाना सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
3: बरसात।
2: बरसात फिल्म का? बरसात फिल्म से? सिर्फ बरसात?
3: ये नहीं हो सकता,
2: ये हो नहीं सकता।

0: ये बरसात फिल्म का गाना
1: ये नहीं है सच तो सर।
0: हाँ हाँ ठीक है, मिल गया ये गीत। तो बरसात करवा रहे हैं कि नहीं इस समय? गर्मी तो बहुत पड़ रही है
1: जी, बहुत गर्मी हो रही है।
0: तो पानी जी
1: पहले
0: हुई थी। हाँ तो पानी ऐसे बरसता है फिर उसके बाद धूप होने लगती है खूब तेज। ठीक है
1: जी सर।
0: ठीक है आपको गीत सुनवाते रहे बरसात फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। आकाशवाणी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती है।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: हेलो।
3: हेलो सर।
2: हेलो सर, हाँ स्वागत है, नाम बताएं अपना।
3: हसनू कटरा अयोध्या से बोल रहे हैं, खालिद अहमद।
2: अच्छा, हसनू कटरा से आपने फोन किया है, खालिद अहमद जी।
3: जी सर, सर मुझे उमराव जान का इन आंखों पर मस्ती गाना सुना दीजिए।
2: उमराव जान फिल्म से। और क्या करते हैं खालिद जी?
3: हम खान प्लम्बर सर, आपके
2: हमारे बगल में ही है। ठीक है, तो ये गीत सुन लीजिए अपनी पसंद का, आशा भोसले की आवाज में। ठीक है, आकाशवाणी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कहाँ से कॉल किया सर आपने?
1: मैं अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना, छोटा
0: अर्जुन कुमार सोनकर
1: रमना
0: जी, क्या करते हैं सर?
1: जी। सर पान की दुकान है सर, दुकान करता हूँ।
0: अच्छा, तो अभी आपकी दुकान खुली हुई है या आपने बंद कर दी?
1: नहीं सर, दुकान तो बंद करके घर आ गए, आपका
0: अच्छा
1: प्रोग्राम
0: अच्छा
1: सुन रहे हैं।
0: जी, तो दुकान पे भी सुनते हैं कि खाली घर पे सुनते हैं?
1: नहीं दुकान पे भी सुनते सर, दो रेडियो है ना, एक दुकान पे है एक घर पे है।
0: अरे वाह, तब तो यही शौक
1: हाँ,
0: चाहिए रेडियो के प्रति।
1: सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दुकान पे चलता हूँ, उसके बाद घर आते हैं घर पे चलता हूँ।
0: जी, तो आज कौन सा गाना सुनेंगे जल्दी से बता दीजिए, समय कम है हमारे पास।
1: फिल्म है एक फूल दो माली, औलाद वालो फूलो फलो।
0: एक फूल दो माली से औलाद वालों फूलों फलों। ठीक है, आपको ये गीत
1: जी
0: सुनवा दे
1: सर,
0: रहे हैं आकाशवाणी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: सुनिए,
1: सर,
0: पसंद
1: धन्यवाद।
0: आइएगा।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके ठीक बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए।